ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के जीएसट माह की तीसरी तिथि तदनुसार दिनांक 24 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर कुछ ही पलों में आ

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर लीजिए। अब सुनिए विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित हमारा अगला कार्यक्रम।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन वार

진단. बाबा साहब अंबेडकर का कथन है, मनुष्य का जीवन महान होना चाहिए, ना कि लंबा।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग झरोखा। सुनिए लिखा जोखा आज विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। श्री रामचरितमानस कान का 198वां भाग सुनवाया जाएगा आपसे कुछ देर बाद 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिम्हन, आज दूसरी कड़ी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। आज जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के याद का दिन है। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दिन में 11 बजे सुनिएगा विविधा। विविधा के अंतर्गत हास्य नाटिका होगी सास बहू और हेलो फरमाइश, लेखक निर्देशक यूनुस खान। व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है, अभिनय नरोत्तम बीन। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी सुनाई जाएगी, 2:30 पर सुनिएगा सदाबहार नखमे। दिन में 3 बजे मनचाहे गीत सुनिएगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक चंदन वृक्ष, उषा सक्सेना ने इसे लिखा है, निर्देशक रमा अरुण त्रिवेदी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां और आखिरी भाग सुनवाया जाएगा आज शाम 4 बजे। शाम 5 बजे छाया गीत सुनिएगा, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा, कर्नाटक संगीत पद्धति के राग भाग 2, कलाकार शकुंतला नरसिम्हन। शाम 7 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा, इस श्रृंखला में महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकी जाकू किंगुर से की शौर्य गाथा सुनवाई जाएगी। 7:45 पर साज और आवाज कार्यक्रम में सुरेश यादव की बजाई फिल्मी धुने सैक्सोफोन पर और फिर वही फिल्मी गाने। रात 8 बजे हवा महल में झलकी सुनिए मैरिज एनिवर्सरी, हरि नारायण शर्मा ने इसे लिखा, HS व्यास का निर्देशन। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे विविधा सुनिएगा, हास्य नाटिका सास बहू और हेलो फरमाइश। और इसके अलावा विविधा के अंतर्गत व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आपको बता दें सुबह 9:30 और रात 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। आज है मजरूह की याद का दिन।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के ससुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोतागण नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसा राग के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे एक तरीके से मॉडर्न या आधुनिक कहा जा सकता है। कुछ राग ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हजार वर्ष के पूर्व प्रसिद्ध हैं और थे, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना हाल ही में हुई थी। कतन कुतूहलम इसी प्रकार का एक राग है। पटनम सुब्रमण्य अय्यर, जो एक वाग्यकार थे, करीब 100-150 साल पहले इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में शामिल किया था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासक राज्य करते थे और विलायती बैंड संगीत सुनने को मिलता था। पटनम सुब्रमण्य अय्यर ने इस राग को पाश्चात्य बैंड संगीत की शैली में बनाया और स्वर इस प्रकार लगते हैं।

अर्थात इसमें लगने वाले स्वर शुद्ध हैं। यह 29वां मेलकर्ता राग धीर शंकराभरणम से जन्य है, तो स्वर शंकराभरणम के अर्थात बिलावल के शुद्ध स्वर लगते हैं। राग कतन कुतूहलम का चलन इस प्रकार है।

क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ पाश्चात्य धुन बज रहा हो? लेकिन यह बताना जरूरी है कि वेस्टर्न बैंड संगीत पर आधारित होते हुए भी राग कतनकुतूहलम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पद्धति का ही एक नमूना माना जाता है, अर्थात इसको अच्छी तरह शामिल कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पाश्चात्य संगीत की झलक इसमें होने के कारण इसे शास्त्रीय कोष में शामिल नहीं कर सकते। भला कर्नाटक पद्धति हो या हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत हो, हमारी भारतीय प्रथा में सदा दूसरी सभ्यताओं में से कुछ अंश ग्रहण करके अपना लेना और उसे एक भारतीय रूप देकर उसकी शोभा बढ़ा देना, यह हमारी विशेषता है, हमारी परंपरा की विशेषता है, हमारी कला की विशेषता है। तो आइए अब सुनते हैं राग कतनकुतूहलम में शेष गोपालन की आवाज में मुत्तैय भागवतर की एक रचना। यह कृति आदि ताल में है, अनुपल्लवी के बाद अर्थात अंतरा के बाद एक चित्तस्वरम यानी बंदिश सरगम जुड़ा हुआ है, जिसमें आप राग कतनकुतूहलम का स्वरूप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सुनिए विद्वान शेष गोपालन की आवाज में राग कतनकुतूहलम में मुत्तैय भागवतर की एक रचना।

राग कतन कुतूहलम में सबसे ज्यादा मशहूर एक कीर्तनम है त्यागराज रचित, जो है रघुवंश सुधाम बोधि, जिसकी रचना पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर ने खुद की। तो उसका भी एक छोटा सा झलक मैं दे देती हूँ आपको।

0: अभी आप सुन रहे थे जल तरंग पर राग कदन कुतूहलम। कलाकार थे अन्यम पट्टी एस गणेशन और एस दंदपानी। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।

0: विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का आगाज एक ही रास्ता फिल्म के गाने से करते हैं। हेमंत कुमार की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत खुद हेमंत कुमार का है।

अंदाज फिल्म का ये गीत था। संगीतकार थे नौशाद, लता मंगेशकर की आवाज थी। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

परे फिल्म का ये गीत आपने सुना और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लाजवंती फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें संगीत एस डी बर्मन का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: साहब के
1: शागिर्द फिल्म का ये गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म का नाम प्यार का मौसम, मजरू सुल्तानपुरी आर्ट।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक

0: टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय

0: ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत

0: पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक पीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सबसे पहले सुनिए स्त्री 2 फिल्म का ये गीत। आवाज है विशाल मिश्रा की।

आइए अब सुनते हैं जवान फिल्म से ये अगला गीत, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की, बोल कुमार के, संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का।

आइए फिल्म संगीत के अंत में सुनते हैं डंकी फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह की, बोल इरशाद कामिल के, संगीत है प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

हंसते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए, हर ओर सुंदर मुस्कान का प्रभास करिए, खुशियों से खिल उठती है जिंदगी हमेशा, इसलिए सदा खुश रहने का प्रयास करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार।

मैं श्रोताओं, सुबह की चाय किसे नहीं पसंद, लेकिन अगर जीवन की चाय आप पीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए और फिर अपनी गलतियों को छान लीजिए। अब बस चुस्कियां लीजिए, खुशियों का स्वाद लीजिए और पीजिए जीवन की चाय। जी हाँ, सुप्रभात, आपका अभिनंदन आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।

दोस्तों, हर दिन एक नई सुबह नई ऊर्जा लेकर आता है और ऐसी ही ऊर्जा आप सभी में भरने के लिए हम हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार लेके, जिसे लेकर आई है हमारी साथ हमारी टेक्निकल टीम। तो सबसे पहले करवाते हैं आपसे हमारी क्रिएटिव टीम का परिचय।

0: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं पारसपुरी गोस्वामी और पीके सेन। कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं चंद्राराम पटेल। कंसोल पर अनाउंसर ऑन ड्यूटी एचपीटी पर है शुभम। और एफएम पर उद्घोषिका साक्षी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है संजय व्यास। और कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने। और इस कार्यक्रम में हम दो साथी, मैं मीता मुल्तानी
1: और मैं सीमा शर्मा।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिक तम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मीता जी, हम सभी के जीवन में अलग अलग तरह का संघर्ष होता है, अलग अलग तरह की कठिनाइयां जो हैं वो बनी रहती हैं।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन कई बार ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर हम अपने जीवन में उसे प्रेरणादायक मान लेते हैं या उन बातों से प्रेरणा ले लेते हैं।
3: बिल्कुल सीमा जी।
2: तो ऐसी ही एक छोटी सी बात है जो अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे हो सकता है कि जिनके जीवन में अभी कुछ परेशानियों का दौर जो है वो चल रहा है या कुछ स्ट्रगल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन का काम उनके जीवन में करती है। तो श्रोताओं, गांव में एक बहुत बुजुर्ग मछुआरा था और वो जो था वो बुजुर्ग होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करता था और हमेशा अपनी कड़ी मेहनत और अपने समर्पण के लिए जाना जाता था। हर सुबह जब तक सूर्य निकलते थे, सूर्यदेव उससे पहले उठता और अपने पुरानी नाव पर निकल जाता था सागर में, दूर दूर, बहुत दूर। और उसका ये मानना था कि जुनून और मेहनत जो है वो हमें हर मुश्किल पार करवा सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक दिन था और उस दिन ये जो मछुआरा था समुद्र में मछलियां पकड़ने चला गया। श्रोताओं, अब आप तो जानते ही हैं कि मौसम जो होता है अचानक से बदल भी जाता है। तो बिल्कुल अचानक तेज तूफान आया और उसकी नाव जो थी उछलने लगी। अब उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने श्रोताओं हार मानने की बजाय अपने संघर्ष से लहरों का सामना करने का फैसला किया, क्योंकि दिल में ये बात थी कि भाई अगर संघर्ष भी नहीं करूंगा तो भी मुझे डूबना है, लेकिन संघर्ष करके मैं अपने आप को बचाने की

एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। तो बिल्कुल उसने अपनी नाव को नियंत्रण में रखते हुए तूफान के खत्म होने की प्रतीक्षा की। बहुत से मछुआरे जो किनारे पे थे मीताजी, वो सोच रहे थे कि ये जो मछुआरा उसमें समुद्र में गया है, इसने तो अपनी हार मान ली होगी और अब हमें शायद वो कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तूफान शांत हुआ और दूर से एक नाव चली आ रही है।

0: दूर से एक नाव चली आ रही है, उसमें उसे सुरक्षित लौटते देखा तो सभी ने, जो कहते ना कि दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि इतना भयंकर तूफान था, उसमें से अगर कोई सुरक्षित लौटता है तो बहुत बड़ी बात है। तो श्रोताओं, सभी ने उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की प्रशंसा की, साथ ही साथ खुद के जीवन में भी कहते ना एक अपने आप से ये वादा भी किया कि कभी भी अगर हमारे जीवन में भी कोई कठिनाई या कोई तकलीफ आती है, कोई संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो हम उस परेशानी को पूरी तरीके से अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि खुद को कहते ना प्रोत्साहित करके और उस परेशानी को पार कर लेंगे। तो बिल्कुल यही बात है कि अगर हम हार मान लेते हैं तो हमारी हार होने से पहले हमारी हार हो जाती है, लेकिन अगर जीत का जज्बा दिल में रखते हैं तो फिर जो नई कहते ना सक्सेस पॉइंट्स हैं वो हमारा इंतजार करते हैं।
1: बिल्कुल, तभी तो कहते हैं ना सीमा जी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नीता जी, आज है 24 मई, और जो 24 मई है, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं आज के दिन में दर्ज हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के जन्म और ऐतिहासिक उपलब्धियां जो हैं वो भी आज की तारीख में दर्ज हैं। और इस दिन भारत और विश्व में राजनीति, विज्ञान, खेल, कला जगत से जुड़ी कई यादगार घटनाएं जो हैं वो घटी हैं, और आप समझ गए हैं कि अब हम किस ओर अपना रुख करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सीमा जी, तो हम आज श्रोताओं को रूबरू करवा रहे हैं 24 मई के दिन के इतिहास के बारे में।
0: बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं 24 मई 1543 में श्रोताओं, जहां पोलैंड के महान खगोल शास्त्री जो थे निकोलस कोपरनिकस, उनका निधन हुआ था। उन्होंने सूर्य केंद्रित सौरमंडल का सिद्धांत दिया था। और वहीं क्या आप जानते हैं कि 24 मई 1819 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था। उनके शासनकाल को विक्टोरियन युग कहा जाता है श्रोताओं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, और इसी तरह 1844 वर्ष में आज ही के दिन टेलीग्राफ के आविष्कारक सैमुअल मॉर्स ने वॉशिंगटन से बाल्टीमोर के बीच दुनिया का पहला सफल टेलीग्राफ संदेश भेजा था मित्रों। साथ ही वर्ष था 1883 और दिन था आज का यानी 24 मई। न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन को जोड़ने वाला प्रसिद्ध ब्रुकलिन ब्रिज 14 वर्षों के निर्माण के बाद जनता के लिए खोला गया था।
0: और क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1956 में स्विट्जरलैंड के लुगानो शहर में पहला यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था। और 1976 की अगर हम बात करें तो 24 मई में प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा के नाम पर भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था।
1: साथ ही मित्रों, वर्ष 1920 में देश में मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र माने जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 24 मई यानी आज ही के दिन हुई थी। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की जरूरत को महसूस करते हुए 1877 में एक स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। यही कॉलेज आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। आज़ादी के बाद देश के चार प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से यह प्रमुख था। साथ ही वर्ष 1930 में एमी जॉनसन इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक अकेले उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। बातें और भी होंगी, पहले सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

यशोदम सूर्य की तपिश का अग्नि पर्व नौतपा। आपको बताएं कि इस वर्ष नौतपा शुरू होगा 25 मई से और 2 जून तक रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इन 9 दिनों में भीषण गर्मी, तेज लू और तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और नौतपा क्यों माना जाता है विशेष, अगर इसकी हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपा वर्ष के सबसे अधिक गर्म और प्रभावशाली दिनों में गिना जाता है। श्रोताओं, ऐसी मान्यता है कि इस दौरान सूर्य का अग्नि तत्व जो होता है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और सूर्य की किरणें अधिक प्रखर होकर पृथ्वी पर पड़ती हैं। इसी कारण तापमान तेजी से बढ़ता है और भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिलता है। लोक मान्यता ये भी है कि यदि नौतपा के सभी दिन अच्छी तरह तपें तो आगे चलकर अच्छी बारिश होने की संभावना बढ़ती है।

बिल्कुल श्रोताओं, तो कल से नौतपा शुरू होने जा रहा है, लेकिन हमें इस नौतपा में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस बारे में हम अब बात करते हैं। तो इस समय दोपहर में अनावश्यक यात्रा से बचें, धूप में बिना सिर रखे बाहर न निकलें, शरीर में पानी की कमी न होने दें, अत्यधिक गर्म और तले हुए भोजन से परहेज करें, बच्चों और बुजुर्गों को विशेषकर तेज धूप से बचाकर रखें। साथ ही इस नौतपा के दौरान पौधारोपण और जलदान को बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। श्रोताओं, मान्यता है कि इससे सूर्य से संबंधित अशुभ प्रभाव कम होते हैं। प्यासे लोगों को जल पिलाना, जल से भरा पात्र दान करना और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार नौतपा को मानसून का गर्भकाल भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की तीव्र गर्मी और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से मानसून की परिस्थितियां बनती है। कहा जाता है कि इन दिनों महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी लगाती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। तो आप भी नौतपा में अपना परहेज जरूर करें।

श्रोताओ, 9 बजने वाले हैं और आपको पता है कि इस वक्त वक्त होता है न्यूज़ ब्रेक का। तो यहाँ हम रुकेंगे एक न्यूज़ ब्रेक के लिए और फिर मिलेंगे आपसे 9:10 पर।

यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती को लेकर सभी सरकारी विभागों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें सरकारी खर्चों में कमी लाने, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या

0: मित्कर ने राजकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल्स में बदला जाएगा। संविदा वाहनों में भी ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्य भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक ही दिशा में आने जाने वाले अधिकार और कर्मचारियों को कार पोलिंग अपनाने और तात्कालिक रूप से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। ये खर्च नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। श्री वैष्णव कल जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भिवाड़ी में खुले प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस क्लस्टर के जरिए अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी इलाके को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना का स्वागत किया है। श्री शेखावत कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका समाप्त हो जाएगी।
1: आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अवैध हो जाएंगे। हम भारत की सीमाओं को अवैध बनाने के लिए सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अवैध बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से, हमारे राजस्थान से, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3 से ज्यादा सीमा जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
0: श्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री शाह का कल रात बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 26 मई को सांचू बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर जवानों से संवाद करेंगे। वे सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। श्री खर्रा कल अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का काम है।
2: हम तो तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी उचित समझेगा और सरकार से उनको जो मदद की आवश्यकता होगी सरकार वो मदद देने को तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तैयारी करे।
0: गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और टाले नहीं जा सकते। अदालत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन तथा मतदाता पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने और बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने को कहा। श्री देवनानी ने कहा कि

0: पुष्कर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में घाटी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री सिंह ने कल महाराष्ट्र के सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
1: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और हल्की बरसात हुई। वहीं जैसलमेर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। 44 डिग्री पारे के साथ पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म हवाओं का प्रकोप अधिक है। सरहदी जिलों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी जिलों में तेज लू और पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये 2 जून तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा तपिश पृथ्वी पर डालता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार
2: श्रोताओं, समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार में।
3: कॉमनवेल्थ डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस। जी हाँ श्रोताओं, भारत सहित दुनिया के कई देशों में हर साल 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का प्रचलन शुरू हुआ था। 24 मई 1819 को महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था श्रोताओं, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य उन सभी देशों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इस दिन को मनाने का मकसद एकता और मानवता को स्थापित करना है, ताकि राष्ट्रमंडल देशों में स्वतंत्रता की भावना का विकास हो। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद पहली बार साल 1902 में साम्राज्य दिवस यानी कि एम्पायर डे आयोजित किया गया। साल 1958 में हेरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया था। फिर जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य से देश आजाद होते गए,

0: उन्होंने इस दिवस को मनाना शुरू कर दिया। श्रोताओं, विश्व के कई देशों में जब ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हुआ तो इन आजाद देशों को एकजुट रखने के लिए राष्ट्रमंडल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इन देशों ने मानवता का संकल्प लेकर राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने की शुरुआत की। भारत राष्ट्रमंडल दिवस को मानवता और शांति के संदेश को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाता है। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं, वो इस दिन को सामाजिक न्याय, सहनशीलता और स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों को याद करना जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया।
1: श्रोताओं, साथ ही आज हम मना रहे हैं विश्व मारखोर दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस ऐतिहासिक प्रजाति और इसकी लुप्त प्राय स्थिति के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर 24 मई को इस दिवस की शुरुआत की थी। मारखोर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी है, जो अपने आकर्षक सर्पिल और घुमावदार सींगों के लिए जानी जाती है। मित्रों, यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण एशिया के ऊंचे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों जैसे अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और तजाकिस्तान में पाई जाती है। भारत में यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। तो हम भी इसके संरक्षण के लिए जागरूक बनें।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।

0: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: श्रोताओं, अभी गर्मियां चल रही है और गर्मी में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम काम की बात में आपको बताते हैं कि हमारे लिए गर्मियों में सबसे अच्छा पेय पदार्थ क्या है, और वो है, सोचा आपने, बिल्कुल सही पहचाना, वो है कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी। मित्रों, आपने कभी ये सोचा कि नारियल के अंदर पानी कैसे पहुंचा? ये समझने से पहले हमें नारियल की संरचना को जानना होगा। नारियल में कुल तीन परतें हैं, एस्कोकॉर्प, मेसोकॉर्प और एंडोकॉर्प। एस्कोकॉर्प नारियल का बाहरी हिस्सा है जो कठोर होता है, मेसोकॉर्प में रेशेदार भूसा होता है, वही एंडोकॉर्प आंतरिक परत है जो नारियल के सफेद गूदे की रक्षा करती है। एंडोकॉर्प के अंदर दो मुख्य चीजें हैं, गूदा नारियल में नरम और जेली जैसा होता है, पूरी तरह तैयार होने पर वो कठोर हो जाता है। नारियल का पानी गुहा यानी कैविटी में भरता है। यह पानी एक पौष्टिक फ्लूड है जो बीज के विकास को पोषण देता है, और ये नारियल के विकास के दौरान स्वाभाविक रूप से बनता है। नारियल पानी उसके पेड़ की जड़ों से एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होकर पेड़ के वेस्कुलर सिस्टम से नारियल के अंदर पहुंचता है, और यह 95% पानी और केवल 5% पोषक तत्वों से युक्त होता है। ये जो 5% हिस्सा है उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो नर्व यानी तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को पोषण देते हैं। साथ ही मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये नारियल जो है इसमें पानी कैसे पहुंचता है, तो अब हम आपको बताते हैं कि नारियल में पानी कैसे पहुंचता है।
1: जी श्रोताओं, आप जो ये सोच रहे हैं कि नारियल में पानी कैसे पहुंचता है, ये ना बारिश का पानी होता है और ना ही समुद्र का, तो फिर क्या कोई जादू होता है? अंदर कोई जादूगर बैठा है जिसने पानी का नल चला दिया और नारियल के अंदर पानी भर दिया? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। सीधी सी बात ये होती है श्रोताओं कि ये एक फिल्टर्ड रस की तरह है जो नारियल के पेड़ों की जड़ों से एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित होकर के, जैसा कि अभी मीता जी ने बताया कि वेस्कुलर सिस्टम में पहुंचता है श्रोताओं, और यहाँ पर जाइलम टिश्यूज के माध्यम से ऊपर नारियल तक पहुंचता है। नारियल का पेड़ जो है वो अपनी व्यापक जड़ प्रणाली के माध्यम से मिट्टी से ग्राउंड वाटर और उसमें घुले पोषक तत्वों को कर लेता है एब्जॉर्ब, और ये पानी पेड़ के तने और शाखाओं के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है और पहुंच जाता है अंत में फल तक, और वो हमें मिल जाता है नारियल पानी के रूप में, जिसे आप हम सब

0: श्रोताओं, आज है 24 मई और 24 मई के दिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी ताकत से अपना नाम अमर कर दिया। उसमें सबसे पहले हम याद करते हैं महान पर्वतारोही बछेंद्री पाल को। बछेंद्री पाल ने उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी की पहाड़ों की गोद में 24 मई साल 1954 में जन्म लिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय और दुनिया की पांचवी महिला है। मित्रों, चौरासी के अभियान में शामिल होकर बछेंद्री पाल ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर विजय पाई और भारत की महिलाओं को पर्वतारोहण के क्षेत्र में ला खड़ा किया।
1: जी श्रोताओं, पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल, अगर हम इनकी बात

करें तो ऐसी प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त की, उनका स्थान विश्व में पांचवा है श्रोताओं। साथ ही साथ इन्होंने न केवल महिलाओं के पर्वतारोही दल का एवरेस्ट अभियान में नेतृत्व किया, बल्कि 1994 में बछेंद्री पाल ने गंगा राफ्टिंग भी की। ये राफ्टिंग उन्होंने हरिद्वार से कलकत्ता तक महिला दल का नेतृत्व करते हुए की थी। 1997 में बछेंद्री पाल ने केवल महिला दल का नेतृत्व करते हुए हिमालय पर्वतारोहण भी किया था श्रोताओं, और 1990 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हुआ। '86 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 1994 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार प्रदान किया गया, और श्रोताओं 1997 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें ऑनरेरी डीलिट की डिग्री प्रदान की गई थी। 1997 में ही बछेंद्री पाल को महिला शिरोमणि अवार्ड से भी नवाजा गया था।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जी श्रोताओं, सूरज भी जैसे मुस्कुरा रहा है साथ में, क्योंकि आज तो बस सुकून ही सुकून है हर बात में, हर पल को आराम से जीने का इशारा कर रहा है। रविवार है, दिल को बहलाने का दिन, खुद से मिलने और मुस्कुराने का दिन, छुट्टी का दिन, सुकून भरा मन जैसे उड़ता पंछी खरा। न जल्दी उठने की कोई चिंता, न कामों की कोई झंझट, रविवार कहता थोड़ा ठहरो, जीवन की रफ्तार से जरा उतरो, अपनों के संग हंसी बांटो और खुद को भी थोड़ा समय दो। जी हां श्रोताओं, आप समझ चुके हैं कि हमारा इशारा अब किस तरफ है। मेहमान का रविवार।

जी श्रोताओ, मेहमान का रविवार प्रोग्राम जिसका रहता है आपको भी बेसब्री से इंतजार, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आज फोन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं मिसेस मोनिका व्यास। आप शिक्षाविद हैं श्रोताओ, 20 सालों से आपने अपने आप को पूरी तरीके से एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उसमें पूरी तरह से डुबा रखा है। स्टूडेंट्स को गाइड करना, उन्हें एकेडमिक एक्सीलेंसी के लिए किस तरीके से वर्कआउट करना है ये बताना, साथ ही साथ हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है, अद्भुत है, और उसकी इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी को निखारना ही इनके जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे साथ हैं मोनिका व्यास। मोनिका मैम, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम में।

जी श्रोताओं, जो हमारा मेहमान का रविवार प्रोग्राम होता है उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसी शख्सियत से आपकी बातचीत करवाएं जिनकी कुछ अलग सी बातों से हम भी अपने जीवन को और संवार लें, कुछ और बातों को हम निखार लें। जी हाँ, ये बात हम मानते हैं कि औरों के मुकाबले कुछ हम ज़्यादा नहीं पा पाते हैं, कई बार ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हम खुश हो जाते हैं कि हमने खुद के जितने भी हमारी कैपेबिलिटी थी, जितनी भी हमारी कैपेसिटी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा काम किया। और जब इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो दिल में एक सुकून होता है, एक संतुष्टि होती है। तो बिल्कुल उसी सुकून और उसी संतुष्टि को हम साथ लेकर आते हैं हमारी आज की शख्सियत यानी कि रविवार की

शख्सियत की दिनचर्या के साथ। तो बिल्कुल मेहमान का रविवार, हमारे साथ हैं मिसेस मोनिका व्यास। मोनिका जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम नमस्कार में। हेलो हेलो, हम समझते हैं कि संडे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और संडे जो इतना इम्पॉर्टेंट होता है उसमें से अपना कीमती समय जो शख्सियत हमारे साथ शेयर करती हैं, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो समय देने वाली बात होती है वो भी होती है। और जब वो अपना समय हमारे साथ देते हैं, यानी कि अपनी दिनचर्या को हमारे साथ शेयर करते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो आपसे और हमसे बिल्कुल रूबरू हो जाते हैं। हालांकि माध्यम फोन होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आवाज़ दिल की होती है तो दिल से जुड़ जाती है।

0: जी हाँ, हमने आपको बताया कि हमारे साथ आज फोन के माध्यम से जुड़ी हैं मिसेस मोनिका व्यास। आप शिक्षाविद हैं। मोनिका जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम में।
1: थैंक यू मैम।
0: मोनिका मैम, आपने अपने संडे में हमें जो वक्त दिया है वो सच में अद्भुत है और उसके लिए हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बिना किसी देरी के हमारे श्रोता और हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपना संडे स्पेंड करते हैं, मॉर्निंग से किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी से अलग हो जाती है आपकी सुबह।
1: जैसा कि मैं सभी लेडीज को कहना चाहूंगी, जो भी वर्किंग वुमेन है उनके लिए, कि हम संडे को ही अपने मकान को घर बना पाते हैं शायद फैमिली के साथ में।
0: बिल्कुल सही।
1: शायद वही वो दिन होता है जिस दिन हम फैमिली के साथ में स्पेंड करते हैं। और कुछ हद तक मैं ये भी कहूंगी कि शायद हम भगवान से भी शायद उसी दिन ज्यादा जुड़ पाते हैं, क्योंकि कर्म तो हम सिक्स डेज करते हैं, लेकिन एक दिन हमें मिलता है जब मैं धर्म भी कर पाऊँ, अपना धर्म निभा पाऊँ, अपने धर्म के बारे में जान पाऊँ और कुछ सीख पाऊँ। संडे मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे संडे का

0: मेरा रूटीन रहता है वो सब इन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि मेरा हर दिन बच्चों के साथ में भी मैं अपना बचपन जीती हूँ, लेकिन इस दिन मैं अपने बच्चों के साथ में अपने हस्बैंड के साथ में अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ, अपने मेहमानों का स्वागत करती हूँ और कुल मिला के मैं अपनी जिंदगी को एक बार फिर से जीती हूँ।
1: मतलब आपकी जो आवाज है उससे बिल्कुल लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड होती हैं अपने संडे को लेकर।

0: उतना से होती है, जैसे
1: जी
0: कि एवरीडे मैं 4:30 उठ जाती हूँ, लेकिन संडे के दिन मैं 5:30 तक उठती हूँ और उठ के चाय के साथ से मेरी शुरुआत होती है।
1: जी
0: उसके बाद में मैं डेली रूटीन का अपना वर्क करके पूजा पाठ करती हूँ
1: तो जो
0: और
1: चाय
0: उसके
1: होती
0: बाद
1: है,
0: में मैं सारा
1: बिल्कुल आपको यहाँ रोकूंगी मोनिका जी, जो चाय होती है
0: जी।
1: वो आप खुद बनाती है या फिर उस दिन आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं?
0: जी मेरे हस्बैंड चाय बनाते हैं।
1: नहीं, मतलब इस बात को शेयर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संडे जो होता है ना ये
0: नहीं,
1: फैमिली
0: मुझे मुझे
1: टाइम।
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: मुझे बहुत प्राउड है
1: जी जी जी
0: कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए बहुत सोचते हैं,
1: जी
0: उससे कहीं ज्यादा जितना मैं सोचती हूँ,
1: मैम,
0: मुझे
1: यही
0: लगता
1: प्यार
0: है।
1: होता है, यही बॉन्ड होता है जो हमारी फैमिली को हमारे साथ जोड़े रखता है।
0: बिल्कुल
1: जी मैम, अब चाय पीने के बाद में फिर आप जो अपना डेली रूटीन है उसके बाद में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या आपका रहता है।
0: पूजा पाठ करने के बाद में मैम मैं अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, उनकी डेली रूटीन, उनकी सारी बातें सुनती हूँ
1: जी जी
0: और इसके साथ में ही हमने अपने घर में एक स्पीकर लगा रखा है, उसमें मैं एवरी डे जब भी अपना रूटीन वर्क करती हूँ तो अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनती हूँ।
1: जी
0: मेरा मेरे हस्बैंड की पसंद के सॉन्ग एक जैसे ही हैं
1: अच्छा,
0: तो मैं वही सॉन्ग सुनती हूँ जो हम दोनों को पसंद है, हम गुनगुनाते हैं और काम करते हैं घर
1: क्या
0: का।
1: बात है। मतलब मैं इमेजिन कर पा रही हूँ जो आपकी फैमिली की जो संडे होता है किस तरीके से सिचुएशंस जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही है। मैं भी इमेजिन कर रही हूँ और मेरे
0: बिल्कुल
1: श्रोता जो हैं उन्हें भी ये सब चीजें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं और वो भी इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुत ही प्यार भरा माहौल जो है घर में देखने को मिलता होगा। मैम, फैमिली के बाद में नंबर आता है उन खास दोस्तों का जिन्हें हम शामिल करते हैं हमारे संडे में, तो क्या कुछ ऐसा आपके संडे में भी होता है?
0: कहूंगी पहले तो माफी मांगना चाहूंगी अपने उन सभी दोस्तों से जिनको मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ शायद,
1: जी
0: या मैं बहुत आगे निकल आई हूँ, दोनों ही कह सकती हूँ कि मैं उन दोस्तों से नहीं मिल पाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार मेरा फोन पे बात होता है उनसे लेकिन मिल नहीं पाती हूँ।
1: जी
0: लेकिन मैं अपना बचपन जरूर जीती हूँ मैम उन 6 दिनों में जब मैं अपने स्कूल में होती हूँ, जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ, अपना बचपन मैं उन्हीं के साथ जीती हूँ
1: क्या
0: और अपने उन
1: बात
0: सभी
1: है
0: फ्रेंड्स को याद करती हूँ
1: जी।
0: और जो गीत हम साथ में गुनगुनाते थे वो सभी गीत मैं अपने स्पीकर में सुनती हूँ संडे को।
1: मतलब ये
0: तो
1: याद
0: इस
1: करने का
0: तरह से
1: एक,
0: याद
1: बिल्कुल
0: करती
1: सही
0: हूँ।
1: आपने कहा कि जो गीत होते हैं ना वो एक दूसरे को याद करने का बहुत ही बढ़िया जरिया होते हैं। जो भी इंसिडेंट्स
0: बिल्कुल
1: उस गीत से जुड़े होते हैं जब भी हम वो गीत फिर से सुनते हैं तो वो सब बातें याद आती हैं, वो सब लोग याद आने लग जाते हैं जी। मैम, वैसे तो देखिए शिक्षा जो है आप इस क्षेत्र में 20 वर्षों से हैं और बच्चों के लिए आप कार्य कर ही रहे हैं, तो एक तरीके की ये भी सोशल एक्टिविटी है, लेकिन क्या कुछ और भी इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट रहता है?
0: जी इंटरेस्ट रहता है, ज्यादा तो नहीं जा पाती लेकिन हाँ कभी कभार हम कहीं जैसे वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम कुछ इस तरह
1: जी
0: की जगहों पर जाते हैं, बच्चों का बर्थडे होता है तो वहीं पे सेलिब्रेशन करते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, 1 साल में 2 या 3 बार ही हम जा पाते हैं और इस
1: अच्छा
0: तरह से, वो भी इसीलिए क्योंकि ये मेरा और मेरी फैमिली का, मैंने अपनी फैमिली से यही सीखा, मेरे पेरेंट्स से मैंने यही सीखा
1: जी,
0: कि शायद अगर भगवान हमें देने लायक बनाता है तो हमें देना ही चाहिए,
1: बहुत बढ़िया
0: उसने
1: बहुत
0: हमें
1: बढ़िया।
0: बनाया इसीलिए है, उसने हमें देने लायक इसीलिए बनाया है ताकि हम दे सकें, उसने हमें एक मीडिएटर बनाया है।
1: जी
0: मैंने अपने फादर से अपनी मदर से मैंने हमेशा यही सीखा और मुझे यहाँ पर भी सपोर्ट मिला फैमिली में, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ,
1: जी
0: तो मैं इन सभी के जो भी अच्छे गुणों को मैंने लिया उनके संस्कारों को आगे ले जाते हुए उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करती हूँ।
1: बहुत बढ़िया। श्रोताओं, आपको बताएं हमारे साथ हैं मिसेस मोनिका व्यास, आप एजुकेशनिस्ट हैं। मैम, बात आपने कही कि आपके पेरेंट्स से भी आपको यही संस्कार मिले जिसे आपने कैरी फॉरवर्ड किया, आपने इन लॉज के साथ में भी आपने उन्हीं संस्कारों की पालना की, तो जब बात पेरेंट्स की चल रही है तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल मैम, देना चाहूंगी एज अ पेरेंट, एजुकेटर भी देना चाहूंगी।
1: बिल्कुल
0: पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपेयर किसी से ना करें, उनकी तुलना किसी से ना करें,
1: जी
0: क्योंकि हमारे बच्चे यूनिक है, दुनिया का हर इंसान यूनिक ही है, शायद इसीलिए हम सभी की शक्ल एक जैसी नहीं, तो
1: जी बिल्कुल
0: पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे को यूनिक माने, उसकी हर हार को जीत में बदलने की कोशिश करें। कहते हैं कि डूबते हुए को तैरना नहीं सिखाया जाता, डूबते हुए को बचाया जाता है, अगर कोई डूब रहा है तो हमें
1: बिल्कुल
0: उसे उसी समय तैरना नहीं सिखाना है,
1: सही बात
0: हमें
1: है।
0: उसको उस समय बचाना है, तो ऐसी अगर

0: फीलिंग हर पेरेंट के मन में आए कि जब भी वो हारता है बच्चा या जब भी अपने जीवन में उदास होता है तो हमें उसके साथ में खड़े होना है, उसको तकलीफ से बाहर निकालना है. लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना, सोसाइटी क्या कहेगी इसकी परवाह किए बिना, क्योंकि ये वही सोसाइटी है जिसके हिस्से हम हैं. हम ये सोसाइटी है, हम ही बदलेंगे जो बदलना है, हमें ही बदलना है, कोई और नहीं आता है बदलने के लिए.
1: बिल्कुल सही आपने कहा. जी, हर बच्चा यूनिक है और उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग ग्रूम करने में
0: हर बच्चे एक दूसरे की अलग मदद कर सकते हैं.
1: जी मैम. मैम वापस से आते हैं घर की तरफ और घर में अब वक्त हो जाता है लंच का और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पलों का जो हम चाहते ना कि एक बार घर में घुस गए तो वापस बाहर नहीं निकले. तो जो लंच होता है, जो डिनर होता है, ये आपकी पसंद का रहता है या आप बच्चों की पसंद का बनाती हैं? क्योंकि ये एक ही दिन है जब सबकी पसंद आपको जाननी है और उसके अनुसार काम भी करना है.
0: मैम इतने साल अपनी फैमिली के साथ रहते रहते हर एक लेडी अपनी पसंद को वही पसंद बना लेती है जो हस्बैंड को पसंद है, अपने बच्चों को पसंद
1: क्या
0: है.
1: बात है, क्या
0: क्योंकि हमारे जमाने में ऐसा होता था कि पेरेंट्स हमसे नहीं पूछते थे कि आज क्या बनाना है.
1: जी बिल्कुल.
0: पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि क्या बनाना,
1: क्या बनाना है.
0: बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके अकॉर्डिंग खाना बनता था, उनके अकॉर्डिंग ही पूरी दिनचर्या चलती थी. तो हम बच्चे उसी के हैबिचुअल हो रखे हैं. हमारी जो जनरेशन है, जो लास्ट हम तक की आपकी अभी भी, तो हम अभी भी वही है. हमने अपने आप को नहीं बदला. हम अभी भी वही कहते हैं कि जो बच्चे कहते हैं ठीक है,
1: सही,
0: बच्चों की पसंद का बना लेते हैं मैम और वही खा लेते हैं और वही हमारी पसंद है. क्योंकि बच्चे ने खुश होके खाया है तो हम ऑलरेडी उनको देखकर ही खुश होके और खा ही लेते हैं मैम.
1: जी जी बिल्कुल सही आपने कहा कि उनकी पसंद हमारी पसंद बन जाती है और ये जो पसंद है कहते हैं ना कि पूरे घर के माहौल को बहुत ही पॉजिटिव कर देती है. मैम एक और सवाल दिल में आ रहा है, तो क्या कभी कभी ट्रैवलिंग का भी मूड बनता है पूरी फैमिली का संडेज को?
0: ट्रैवलिंग का बनता है लेकिन कहीं दूर नहीं जाते, जोधपुर में ही जैसे हम कहीं घूम आते हैं. और ज्यादातर जैसे बच्चों का जो जुड़ाव है वो फैमिली से है, अपनी बुआ से है. मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं है तो उनके जो सिस्टर्स हैं उनके यहाँ पर हम जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं को अपनी ग्रैंड मदर मानता है बच्चा मेरा. बहुत अटैच है उन लोगों से, हम जाते हैं. मेरे मायके जाते हैं, मेरे पेरेंट्स जिनसे मैं नहीं मिल पाती हूँ पूरे सप्ताह, तो उनसे मिलना होता है. पेरेंट्स से मिलके और इन बड़ों के आशीर्वाद से जो मिलके खुशी होती है वो शायद पूरे वीक को अच्छी तरह स्पेंड करने के लिए काफी होता है मोटिवेशन कि आप सब कुछ कर सकते हो और आप सही चल रहे हो. तो वीक में एक बार ये सुनना बहुत जरूरी होता है कि आप सही हो.
1: आप सही हैं. बिल्कुल. ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है मैम और आगे के जो वीक है उसके लिए हमें एनर्जाइज भी करता है, तो ये तो जरूरी है. मैम एक छोटा सा दिल में बात और आ रही है कि जैसे हम देख रहे हैं कि आपने कहा अभी लास्ट जनरेशन है हम, तो ये जो बच्चों में जो ये बदलाव आ रहा है जिसके कारण हम अपने आप को लास्ट जनरेशन मान रहे हैं इन सभी संस्कारों की और जो आगे जेन जी जेन अल्फा ये जो आ रही है, तो इसके क्या रीजंस है? बहुत शॉर्ट में अगर आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या कारण हो जाता है ऐसा.
0: जी जी मैम, रीजन तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा रीजन जो है हमारी खुद की पेरेंटिंग है. आज बच्चे को पेरेंट्स के अलावा कोई और कुछ कहता नहीं है. घर में दादा दादी है, नाना नानी है, बुआ है, मौसी है या अंकल आंटी है, इन सबसे दूर होता जा रहा है बच्चा. हमने खुद ने उनको दूर किया है. बच्चा हुआ नहीं था, हमने किया है. और हम इस जनरेशन को लोगों से लड़ने की क्षमता सिखा ही नहीं रहे हैं. लोगों से, लोग जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को सुनने की क्षमता नहीं सिखा रहे हैं. मैंने गलत वर्ड यूज लिया, लड़ना, नॉट लड़ना. बच्चों को ये पूरा समाज, ये जो पूरी हमारी फैमिली है, यही हमें बच्चे को सिखाती है कि तुम्हें दुनिया का सामना कैसे करना है. अगर आपने कुछ गलती की है, दादा दादी ने डांटा, मामा मामी ने डांटा, बुआ ने डांटा, किसी ने भी इंटरफेयर किया और आपको टोका, तो उस समय हम जो पेरेंट होते हैं क्या करते हैं, बच्चे को उनसे दूर कर देते हैं. बच्चे के दिमाग में यह फीलिंग डालते हैं कि आपको इन सबसे दूर रहना है. फाइनली ये होता है कि बच्चा इन सबसे दूर हो जाता है और जब सडनली वो दुनिया के किसी और कोने में जाता है जॉब करने के लिए, बाहर कहीं जाता है, उस समय बच्चा पूरी तरह से नर्वस हो जाता है.
1: जी जी बिल्कुल. तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर सही पेरेंटिंग होगी तो बच्चा जो आज हमसे दूर होता जा रहा है वो दूर नहीं होगा.
0: बिल्कुल. और इसी वजह से बच्चा मोबाइल यूज लेता है, टीवी देखता है, क्योंकि बच्चा कुछ तो करेगा पूरे दिन, उसके भी तो करता नहीं है. जब हमने उसको फैमिली से अलग कर दिया तो बच्चा कुछ तो करेगा ही.
1: जी
0: बिल्कुल, तो जॉइंट फैमिली होना बहुत जरूरी है। अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तो बच्चे को

0: अपने रिश्तेदारों से मिलवाना बहुत जरूरी है,
1: दूसरे का
0: जो बोलते हैं उनको सुनना जरूरी है।
1: जी जी जी मैम,
0: ये वो प्रिपरेशन है जो वो आगे के लिए उसकी चल रही है।
1: हम लोग एक बार फिर से आते हैं घर के अंदर, जहां आपने कहा कि आपने स्पीकर्स लगा रखे हैं और म्यूजिक आप सुनते हैं, तो किस तरीके के गीत आपको पसंद हैं?
0: पुराने सॉन्ग हमें बहुत पसंद है, लता जी के सॉन्ग बहुत पसंद है जी। पुराने सॉन्ग जो मोटिवेशनल सॉन्ग है वो बहुत पसंद है।
1: आप अपनी पसंद का कोई गीत हमारे श्रोताओं को बताएं जिसे हम भी सुने और आप भी इंजॉय करें।
0: बचपन में मैम मैं जब भी उदास हुआ करती थी या किसी भी काम में मैं सक्सेस नहीं हो पाती थी, तो मेरे फादर साहब अक्सर ये गाना गुनगुनाते थे और मेरे को गाकर मोटिवेट करते थे। आज भी मेरे जहन में वो गाना गूंजता है और जब कभी मैं घर जाती हूँ अपने पेयर जाती हूँ तो मेरे पापा से वो गाना मैं जरूर सुनती हूँ। जी
1: तो बिल्कुल
0: गाना है रुक जाना नहीं। जी
1: देखिए आपके पापा ने जो है आपको गुनगुना के बताया है, तो आप भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा गुनगुना के बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गीत अच्छा, सभी को मोटिवेट करेगा।
0: जी रुके जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलूंगे बाहर के।
1: क्या बात है जी, बिल्कुल
0: आपके
1: हमारी बात बीच बीच में कट जाती है, लेकिन आपकी फीलिंग्स मैं समझ रही हूँ। आपके पापा का बहुत ही स्पेशल सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो बिल्कुल आपके इस स्पेशल सॉन्ग को और स्पेशल बनाते हैं हमारे श्रोताओं के साथ। आप फोन के माध्यम से हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

श्रोताओं, 70-80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन और कल्याण जी आनंद जी जैसी जोड़ियों का बोलबाला था, उस दौर में एक नए संगीतकार ने बॉलीवुड में एंट्री की और अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार राजेश रोशन की, जो पिछले 5 दशकों से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उनका जन्म आज ही के दिन यानी 24 मई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। राजेश रोशन ने कर्ज, कोयला, जूली, करण अर्जुन, पापा कहते हैं, कहो ना प्यार है, क्रिश, काबिल जैसी सैकड़ों फिल्मों में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। फिल्मों में बेहतरीन संगीत देने के लिए उन्हें 2 बार फिल्म फेयर के बेस्ट

म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही आज हम स्मृति दिवस मना रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का। इनका पूरा नाम असरार उल हसन खान था। इनके लिखे हुए कलाम में जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त क्षमता थी। मजरू की कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों ओर फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्ज बागों से निकालकर दुनिया के दीगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। मजरू सुल्तानपुरी ने काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, बम्बई का बाबू, बात एक रात की, नौ दस ग्यारह, सोलवा साल, तीन देवियां आदि महत्वपूर्ण सुपरहिट फिल्मों में अपना योगदान दिया। उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही वर्ष 1964 में प्रदर्शित फिल्म दोस्ती में उनके रचित गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए वे सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए।

0: तो श्रोताओं ये था आज का नमस्कार, दीजिए अनुमति नमस्कार की पूरी टीम को
1: और स्वीकार कीजिए नमस्कार मुल्तानी और सीमा शर्मा का नमस्कार

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम चुनमुन।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कुछ बातें दिल से होगी, कुछ गीतों की सौगात, हंसी खुशी और यादों संग सजेगा आज का प्रोग्राम।
1: जी हाँ श्रोताओं, नई बातें होंगी जहां शब्द भी गुनगुनाएंगे और सुर भी मुस्कुराएंगे। बातें और गीत की ये जो महफिल है, सब इसमें अपने बन जाएंगे। तो बिल्कुल ये महफिल हमने सजा दी है, और हमें, मैं आपको बताऊं, मैं हूं आपके साथ सीमा शर्मा,
0: और मेरे साथ मुल्तानी,
1: और श्रोताओं हमारे साथ है साक्षी। तो ये जो टीम है, इस टीम ने पूरी तरह से तैयार कर दी है बहुत सारी बातें और बहुत सारे मेलोडियस सॉन्ग्स। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि बातें किस विषय पे होगी आपको भी तो उसके बारे में सोचना है। तो बिल्कुल बता देते हैं कि आज की बातों का जो विषय है वो क्या है।

0: जी हाँ जी हाँ, गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और इमेजिन करिए वो सिचुएशन जब गर्मी की छुट्टियां तो हैं लेकिन हाथ में मोबाइल नहीं है, यानी कि कैसे बिताएंगे हमारे नन्हे मुन्नों से बड़ों तक गर्मी की छुट्टियों को विदाउट मोबाइल।
1: बिल्कुल, और विदाउट मोबाइल जो हमारी दुनिया होगी वो कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, इन सब बारे में हम खूब बातें करेंगे आज के इस दिलचस्प टॉपिक पे। आप जुड़े रहिए, सुनते हैं पहले ये म्यूजिकल ट्रैक।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बातें और गीत, आपका फेवरेट प्रोग्राम। और बातें और गीतों में हमने आपको बात बता दी है ऐसी जिसका सुन के आपको भी सोचने पे मजबूर आप हो गए होंगे कि गर्मी की छुट्टियां हो और मोबाइल हाथ में नहीं हो तो फिर कैसे होगा।
3: बिल्कुल सीमा जी, गर्मी की छुट्टियों का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है तो वो तो देखने लायक होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और माता पिता के माथे पर उतनी बड़ी चिंता की लकीरें खिंच जाती है क्योंकि स्कूल बंद होने का मतलब है बच्चों का सेट रूटीन खत्म हो जाता है, साथ ही उनका समय ज्यादातर टीवी और मोबाइल पर बीतता है।
2: और जब हम तो कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं होगा तो फिर क्या होगा। मीता जी, चलते हैं उस दौर में जब गर्मी की छुट्टियां होती थी और दिल में बस जैसे छुट्टियां नाम आता था तो दिल कहां दौड़ता था?
3: या तो प्रकृति की ओर, और लगता कि कहीं ठंडे सुकून वाली जगह पे जाएं, माता पिता के साथ कहीं घूमने जाएं, और
2: आप समझ गए हैं जो मैं सुनना चाह रही हूँ आपसे।
3: तो हम गर्मी की छुट्टियों में सबसे पहले जहाँ जाना चाहते हैं वो है हमारी नानी का घर।
2: मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे छुट्टी शब्द आया नहीं और चलो नानी घर। ये शब्द जब हम बच्चे थे तब भी सुनते थे, जब शायद हमारे पेरेंट्स बच्चे रहे होंगे तब भी यही वर्ड रहा होगा, और आज की जो जनरेशन है जैसे ही छुट्टी हुई और जो मम्मी है वो बोलती है चलो नानी घर,
3: चलो नानी घर।
2: तो वो जो फील है नानी के घर वाली हर छुट्टी से जुड़ी हुई है, और जब हर छुट्टी से जुड़ जाती है फील तो मोबाइल साथ में रख साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज हम आपका मोबाइल साइड में रखवा करके आपको घुमाने ले चल रहे हैं नानी के घर।

0: मीता जी देखिए, नानी के घर तो घूम के आ गए बिना मोबाइल के, और वहाँ पे खूब सारी बातें भी कर ली नानी से, जो है डिमांड भी कर दी कि भाई गुस्सा तो आप होना बंद कर दो और जो पैसे वैसे हमें दे दो ताकि हम अपनी छुट्टियां एंजॉय कर लें और जो भी हमारे दिल में है वो चीज हम ले लें। तो नानी के घर से तो बच्चा जो है पूरी तरह से अपनी मस्ती करके लौटने लगा, तभी कुछ और एक दिल में ऐसी जगह आती है जो दोनों नानी और साथ में वो शब्द ऐसा है जो जुड़ा ही रहता है,
1: बिल्कुल दादी
0: दादी। तो ये जो दो घर होते हैं श्रोताओं, गर्मी की छुट्टियों की ऐसी दो प्यारी जगह होती है, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी कहते ना कि वहां पे कुछ चाहे चीजें कम हो, लेकिन फिर भी दिल जो है वो दादी और नानी के अंदर ही अटका रहता है।
1: बिल्कुल सीमा जी, तो फिर नानी के घर से जब लौट कर हम अपने घर आते हैं और दादी के साथ बैठते हैं, बतियाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें बहुत से उनके अनुभवों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बच्चों को मिलता है, और बच्चे भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं।
0: मीता जी आपने बिल्कुल सही कहा, और चाहे कितने भी बड़े हो जाए, है ना, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन दादी की जो कहानियां होती है वो तो कहते हैं ना कि एक मैंडेटरी पार्ट हो जाता है लाइफ का, कि ये तो करनी सुननी है। और मतलब ऐसी आदत हो जाती है कि बिना दादी की गोद में लेटे, बिना दादी की कहानी सुने छुट्टी का तो आनंद ही नहीं आता।
1: हाँ, और वो जो कहानियां होती हैं दादी की सीमा जी, उनमें कोई ना कोई सीख जरूर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये मोबाइल की दुनिया से बाहर जब हम अपने नानी दादी की कहानियां सुनते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो वो जिंदगी में आगे ही अनुभव हमारे बहुत आगे ले जाते हैं।
0: और एक और चीज होती है ना कि देखो, मोबाइल पे इमोशंस को सिर्फ हम देखते हैं, लेकिन जो ये रूठना मनाना है, ये दादी से या नानी से तकरार करना है, उनसे अपनी डिमांड रखना है, ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में होता है तो वो छुट्टियों का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो बिल्कुल, दादी भी रूठती है, नानी भी रूठती है, तो जब दादी रूठ जाती है तो कैसे बनाया जाता है, आइए सीख लेते हैं।

0: मीता जी, अभी हम नानी की बात कर रहे थे तो बिल्कुल दिल में वो ना, नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे होकर आएंगे, ये लाइन जैसे फील आ रही थी कि जैसे नानी के घर ही हम पहुंच गए हैं।
1: और हम बचपन में यही गुनगुनाया करते थे ना। बिल्कुल सीमा जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बातें हैं कि हम आजकल की अगर बात करें, आज के सिनेरियो में, तो हम ये देखते हैं कि जो हमें, अगर मान लीजिए कहीं जाने की हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उस प्लानिंग में हमें पैकिंग के लिए भी और सब चीज़ों के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन जो पहला ज़माना था, हमें नानी का घर हो, दादी का घर हो, या कोई भी ऐसा प्यारा रिश्ता हो जहां हम जाकर के मिलना चाहते थे, वहां पे जाने के लिए हमें कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती थी। बहुत ही नेचुरल वे में, बच्चों कहाँ जाना है, नानी घर जाना है, बच्चों कहाँ जाना है, दादी घर जाना है, तो बहुत ही नेचुरल वे में वो चीज़ें जो थी सामने आ जाती थी। और पैकिंग जो हुआ करती थी वो भी ऐसे होती थी कि मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं लेके चले जाए, अपने फेवरेट टॉयज भी ले जाएं, जो आपको पसंद है वो किताबें भी ले जाएं, जिन चीजों से कहते हैं ना कि अपने आप से दूर नहीं कर पाते हैं, उन सभी को पैक कर लेते थे बैग।
1: साथ ही साथ जो अपनी पसंद की चीजें होती थी ना, वो सूखा सामान भी, हमें क्या खाना है, क्या करना है, मम्मी को बोलते वो भी साथ ले लें।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस तरह से ये जो नानी दादी के घर जाने का, और जो आपस में अपने, नानी दादी क्यों, और भी जो अपने परिवार के लोग हैं जिनसे हम सालों नहीं मिल पाते हैं, तो छुट्टियां ही तो एक ऐसा समय है कि हम उन रिश्तेदारों के यहाँ जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, पेरेंट्स साथ में जाएं, और वो एक जो बॉन्डिंग है वो दोनों में हो, ताकि ये रिश्ते रिचार्ज हो।
0: बहुत अच्छा वर्ड आपने किया कि रिश्ते जो है वो रिचार्ज हो। और श्रोताओं, ये रिश्ते कब रिचार्ज हो सकते हैं, जब हम ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आएंगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन पे आने का एक ही जरिया है, रख दीजिए मोबाइल को साइड में और रिश्तों को कर लीजिए रिचार्ज।
1: तो देखिए क्या है आपका हाल, अपने मोबाइल को अलग रखिए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, समझ गई मैं मीता जी, आप जो बात कहना चाह रही हैं, क्योंकि आपने इमेजिन कर लिया कि श्रोता, अगर श्रोता क्यों, आज अगर हम अपनी जिंदगी की बात करें तो मोबाइल के बिना एक पल भी हम नहीं निकाल सकते, ऐसा हमने खुद को बना लिया। तो बिल्कुल उस हाल को इमेजिन करिए, सोचिए उन चेहरों का हाल जब हाथ में नहीं है मोबाइल, सिर्फ है हाथ में रुमाल पसीना पोंछने के लिए।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातें और गीत, और बातें और गीत में मैं हूं आपके साथ सीमा शर्मा
2: और मैं मीता मुल्तानी।
1: तो नानी और दादी के घर हम दोनों ने आपको घुमा दिया है, और घुमाने का उस टाइम जरिया भी क्या हुआ करता था मीता जी?
2: बिल्कुल, अभी जो देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल की दुनिया में रहते हुए अपनी मोबाइल में ही खोए रहते हैं, और दादी नानी के घर की अभी हमने जो बातें की तो वो मोबाइल की दुनिया से दूर रहें, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो हम जो पुराने समय में बाहर जाते थे तो उसका सबसे अच्छा जो एक साधन था प्रकृति की गोद में या दूर पहाड़ों पर जाने का, वो था रेलगाड़ी।
1: क्या बात है, मतलब आपने तो बिल्कुल ही मोबाइल को साइड में करके जो दिमागी उड़ान थी उसको रेलगाड़ी की यात्रा पर ले आए।
2: और वो रेलगाड़ी में जाते हुए हमें एक बड़ा

0: क्रेज हुआ करता था बचपन में, तो आज भी बच्चों को होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, बाहर जाना है तो कहाँ बैठना है, रेलगाड़ी में, और जिसे हम है ना सीमा जी बचपन में कहते थे छुक छुक गाड़ी,
1: छुक छुक गाड़ी। और ये जो आपने बात कही ना कि कहाँ बैठना है, तो सबकी इच्छा होती थी विंडो सीट लेने की। ये इच्छा तो खैर आज भी होती है, जब भी आप ट्रेन में जाएंगे तो कोशिश होती है विंडो सीट मैं जो है वो ऑक्यूपाई कर लूं, लेकिन उस वक्त ये इच्छा इतनी प्रबल हुआ करती थी। और बाहर हम क्या देखते थे,
0: बाहर नजारे देखते थे, और ऐसा लगता था कि जैसे जैसे ट्रेन आगे दौड़ रही है पेड़ पौधे पीछे छूट रहे हैं।
1: हाँ, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी वायर जो पोल पे हुआ करते थे, ऐसा लगता था ये पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं और हम कहीं आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे की साइंस जो थी वो भी बहुत बाद में समझ आई कि नहीं नहीं ये अपनी जगह पे ही है, बढ़ तो हम आगे रहे हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत, आज भी दिल में यही बात आती है जब भी उन पेड़ों को पीछे जाते देखते हैं और ट्रेन का सफर करते हैं, यानी कि सफर करते हैं छुक छुक गाड़ी,
0: गाड़ी का।
2: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर यात्रा रेडी। एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले।

मंगल के हाथ गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुप्पल डिंडिगल डिंडिगल कुप्पल पट्टम दिल्ली पट्टम दिल्ली पट्टम पट्टम उंगोल नर्दिगोल नर्दिगोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

0: मीता जी, ये जो ट्रेन चली है दादी के घर, नानी के घर, और अब हम इन्हें ले जा रहे हैं प्रकृति प्रेम की तरफ। तो अगर बच्चों या कोई भी बड़े जिनके पास में मोबाइल नहीं है, और हम ये देखते हैं कि मोबाइल को साइड में रखा है, गर्मी की छुट्टियां कैसे बितानी है, उसकी कुछ ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं। तो जो प्रकृति है जब हमें दिल खोल कर देती है श्रोताओं, तो फिर हम मोबाइल की रेडिएशन से खुद को खराब क्यों करें, खुद के लिए हेल्थ इश्यूज क्यों क्रिएट करें। तो प्रकृति के प्रेम को स्वीकार करें।
1: बिल्कुल सीमा जी, मेरा भी ड्रीम डेस्टिनेशन यही रहता है कि हम छुट्टियों में प्रकृति की गोद में जाएं, वहां पे ठंडे ठंडे जो हवा के झोंके हैं उसे महसूस करें, झील को देखें, और जो वहां के नीले रंग के साथ ठंडी हवाओं का और जो आनंद है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है।

0: बिल्कुल, आपने जैसा जैसा कहा मैं बिल्कुल बिल्कुल वहाँ वहाँ पहुँच गई और हमारे श्रोता भी आपके साथ साथ वहाँ पहुँचे हैं और हम देखते हैं कि प्रकृति जो है एकदम शांत है ना, और ये भीड़ ये प्रदूषण इन सब से अलग जब हम अपने जीवन के कुछ दिन वहाँ बिताते हैं तो ऐसा लगता है वापस लौट कर ही ना आए।
1: हाँ, मन ही नहीं होता है वापस आने का।
0: तो जब हम जिंदगी के उस पड़ाव पर वहाँ पहुँचते हैं और ऐसा लगता है कि अब कुछ दिन यहाँ पर सबसे दूर सबसे अलग शांत स्वर में या शांत वातावरण में अपने कुछ दिन यहाँ गुजारें तो वो एक फीलिंग ही अलग आ जाती है।
1: बिल्कुल, प्रकृति की गोद का तो आनंद ही अलग है। और उस आनंद को उठाते हुए हम सुनते हैं नेक्स्ट ये म्यूजिकल ट्रैक।
0: मैं समझ गई कि आपने जो प्रकृति तक तो आप ले गए हमें, वहां पे हम रेडियो नहीं ले जा पाए।
1: हाँ?
0: तो आप हमें याद दिला रही हैं कि वहां हमें अपने म्यूजिक का भी इंतजाम करके रखना है क्योंकि शांत वातावरण हो और संगीत के साथ हो तो बात ही अलग हो जाती है।

0: गई, लेकिन प्रकृति की गोद में आने के बाद अपने को वैसा एकदम फ्रेश हो जाएं, हम एकदम रिलैक्स हो जाएं और उसी ठंडी ठंडी छांव का आनंद लेते हुए हम वादियों में अगर आगे कहीं खो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं सीमा जी?
1: जंगल।
0: अच्छा, अरे वाह, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो मीता जी, यहाँ एक बात दिमाग में आ रही है कि हम जैसा सोचते हैं जिंदगी उतनी भी सरल सीधी नहीं होती है, और जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी एकदम से आ टपकती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी छुट्टियों की तैयारी उस तरह से भी करनी है कि आप अगर मान लीजिए कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के साथ आपके पैकिंग में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है उनका भी ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चोट वगैरह लग जाए तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, आपके पास में बेसिक जो आपकी मेडिसिन है
0: वो भी जरूरी
1: है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप जंगल में पहुंच जाएं तो वहां किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वहां आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे, जो जंगली जानवर होंगे वो ज्यादा आपका ख्याल रखेंगे। तो उन चीजों को समझने के लिए तो आपको हमें कहीं ले जाना पड़ेगा, और जंगल आप ले ही जा चुकी हैं तो वहां क्या हुआ कुछ सुन लेते हैं इस गीत से।

नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक पे हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल।

0: मीता जी, जंगल में तो आपने घुमा दिया, डर भी बता दिया कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए जब हम घर के बाहर जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और छुट्टियां पूरी होने वाली हैं, लेकिन अभी भी कुछ दिन बाकी है, तो हम सैर सपाटे से दादी के घर, नानी के घर और जंगल की यात्रा करके वापस आ गए अपने घर। तो
1: लेकिन
0: अभी भी तो
1: आने की बिल्कुल छुट्टियां बाकी है, और आने के बाद में भी ये जो मोबाइल है ना, वो हम दूर रखें तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा।
0: बुलाता है, धीरे धीरे इशारा करता है कि आजा भाई, ले ले मुझे अपने हाथ में, लेकिन आपको बनानी है दूरी।
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल दुनिया से दूरी हमें वास्तव में जो मानसिक शांति और सुकून देती है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप अपने मोबाइल को दूर रख के एक बार देखिए तो सही। और सीमा जी, ये भी बताइए कि अगर हम मोबाइल से दूर रहें तो इन छुट्टियों में क्या किया जाए?
0: हम तो यही विश्वास करते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो जब खेलने कूदने की बात आ रही है तो गर्मी है, बाहर तो आप ज्यादा जाएंगे नहीं,
1: हाँ।
0: तो फिर क्यों ना इंडोर गेम्स जो कभी सुने ही नहीं है,
1: हाँ।
0: उनकी तरफ अपना रुझान करें, और गर्मी की छुट्टियों में उनको भी थोड़ा टाइम दें, घर में बैठें फैमिली के साथ में उन गेम्स को एंजॉय करें, और जो हमारे पुराने पुराने गेम्स हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करें।
1: बिल्कुल। और साथ ही सीमा जी, जो हमारे रचनात्मक या हमारे आर्टिस्टिक कलात्मक शौक जो हैं, उनको भी इन छुट्टियों में टाइम दें। जैसे हम कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई
0: बिल्कुल
1: नया
0: बिल्कुल।
1: आर्ट सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं। और साथ ही कभी हमें लगता है कि हमें कुछ दूर जाकर कुछ एकांत में अपना टाइम बिताना है, और या जैसे अपना शौक पूरा करना, जैसे स्केचिंग है, पेंटिंग है, या फिर अपनी डायरी राइटिंग है, इस
0: बहुत
1: तरह की
0: बहुत
1: जो चीजें
0: बढ़िया।
1: हैं, जर्नल्स हैं, और कोई नॉवेल पढ़ना है, तो ये शौक भी मोबाइल से दूर रह के छुट्टियों में ही टाइम मिलता है
0: और
1: बच्चों
0: ये
1: को हमें।
0: बिल्कुल मोबाइल से दूर होकर के फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इन कामों को कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो है राइटिंग की हैबिट में नहीं है, रीडिंग की हैबिट में नहीं है, तो ये जो होता है ना गोल्डन टाइम होता है।
1: बिल्कुल।
0: और हम ये नहीं कहते हैं कि आप मोबाइल डिटैच कर दीजिए, लेकिन हम ये आपसे ज़रूर कहते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करें, उसके बाद इन सब चीज़ों को आप टाइम दें, ताकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जो क्रिएटिविटी है वो आपकी पर्सनालिटी को और ग्रूम करेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, जैसे हम कहते हैं ना कि कितना भी अगर हम ऑनलाइन टाइम दुनिया में जाएं, ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही है,
0: ऑफलाइन तो
1: उसी
0: ऑफलाइन।
1: तरह से ये डिजिटल दुनिया से दूर रह के यदि हम वास्तविक दुनिया में रचे बसें, इन्हीं को महसूस करें, इन्हीं में कुछ करें। जैसे एक बात और मेरे ध्यान में आई, हम इन छुट्टियों का उपयोग करके कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं।
0: बहुत अच्छा,
1: और कभी
0: बिल्कुल।
1: कभी ऐसा है कि किसी का कोई ऐसा शौक है जिसके लिए उसे समय नहीं मिलता है, जैसे गर्ल्स को कभी सिलाई बुनाई का शौक हो जाए, या फिर कभी कोई स्किल अपनी डेवलप करने का अगर हम सोचें, तो वो टाइम भी बेस्ट जो है वो ये छुट्टियां ही है।
0: ये छुट्टियां मतलब इतना सारा कुछ अपने साथ लेकर आती हैं कि अगर आप अपने उन सभी कामों को करना चाहें तो एक बार की छुट्टियां पूरी नहीं पड़ती है।
1: नहीं
0: आपकी
1: पड़ती
0: पेंडिंग
1: है।
0: लिस्ट जो है वो नेक्स्ट वेकेशन का इंतजार करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और होती है श्रोताओं, कि हमने कहा रीडिंग करना, बुक्स, अगर नोवेल आप कोई पढ़ते हैं वो पढ़ लें, कॉमिक्स बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो एक और स्पेशल सेगमेंट होता है छुट्टियों का, वो होता है हॉलीडेज होमवर्क।

0: बिल्कुल, तो जो हॉलीडेज होमवर्क आपको दिया जाता है उसे आप धीरे धीरे करना शुरू कर दें, थोड़ा सा वक्त उसके लिए दें, प्लस कोई सब्जेक्ट, क्योंकि पढ़ाई को हम छोड़ नहीं सकते,
1: नहीं छोड़
0: कुछ
1: सकते।
0: पढ़ाई की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो जिंदगी बनाती है। तो जो छुट्टियां हैं उनमें आप अपना कोई सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है वीक चल रहा है, इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस की, ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे गणित को ही हम लें, तो गणित विषय एक ऐसा जटिल विषय माना जाता है जो किसी का तो बहुत फेवरेट होता है और कोई इससे बिल्कुल दूर भागना चाहता है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसके लिए बहुत अच्छा है छुट्टियों में अगर कुछ सोचा जाए तो अबेकस इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: और भी बहुत सारे ऐसी पद्धतियां होती हैं जिसमें अपन ये देखते हैं कि हम उनका इस्तेमाल करके और बच्चे जो हैं अपनी छुट्टियों को, कहते हैं ना कि पूरी तरह से यूजफुल बना सकते हैं।
1: हाँ,
0: सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं बल्कि पढ़ाई की भी जो बातें हैं वो हो जाती हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, और बच्चे खुश तो हम खुश।
1: बिल्कुल,
0: और जब हम खुश होते हैं तो दिल कुछ गाने लग जाता है, और वो क्या गाता है, वो कुछ ऐसा है।

0: बिल्कुल, और मोबाइल से दूर रह के किस तरह से हम सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा अभी हमने सारी बातें की। और गर्मी की छुट्टियों में हम थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी बागवानी, थोड़ा एक्टिविटी, थोड़ा स्पोर्ट्स, थोड़ा मेडिटेशन, इन सब को साथ साथ किस तरह से रहें ये भी हमने देखा। तो
1: बिल्कुल,
0: सीमा जी क्या कहेंगे आप?
1: बस यही कहेंगे कि श्रोताओं, जिंदगी बहुत तेज हो गई है, लेकिन कभी कभी खुद के लिए भी समय निकाल लेना
0: बहुत
1: चाहिए।
0: जरूरी है।
1: थोड़ा म्यूजिक हो, थोड़ी फैमिली हो, थोड़ी बातें हो और थोड़ी हो मुस्कान, बस यही छोटी छोटी चीजें जिंदगी को बना देती हैं बहुत खूबसूरत। तो अब वक्त हो चला है कि आपसे लें अनुमति। उम्मीद है बातें और गीत का ये जो 1 घंटे का सफर था आपको बहुत जगह घुमाकर लाया और आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लेकर आया होगा।
0: बिल्कुल, तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। तो मैं मीता मुल्तानी,
1: और मैं सीमा शर्मा, दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

जी श्रोताओं, तो बात हो गई गर्मी की छुट्टियों की, और वो भी बिना मोबाइल के। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं आपके पास कि मोबाइल जो है वो हमारी ज़िंदगी से कुछ कम हम कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें बातें और गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम मनवार।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

घर छोटा हो सके पण दिल हमेशा बड़ो राखे। दोस्ता अठे आज भी कोई घरे आवे तो कहवे आओ सा पधारो सा, और ओ पधारो मारे देश केवल एक लाइन नहीं है, ओ मारवाड़ दो संस्कार है। दोस्ता आजकल दुनिया मोबाइल में उड़ज की है, पर गांवा में आज भी चौक में बैठ की लागे बुजुर्ग किस्सा सुनावे और छोटा टाबरिया हंसता भागता फिरे। गांवा में आज भी टाबरिया सतोड़िया कंचा जड़ा खेल खेले, लेकिन शहरा रा टाबरिया दुनिया एक मोबाइल फोन तक सीमित होने रहेगी है। गांव में टाबरिया आज भी धूप में माता पिता सागे खेता में जावे, थोड़ो घणो काम करावे, खेले पेड़ों बोर्ड तोड़ने खावे, हरियाली तो आनंद लेवे, हवा रो आनंद लेवे, लेकिन शहर में आज टाबरिया घर सु बारे ही कोनी निकलनो चावे। क्योंकि हर खेल वे फोन में खेल लेवे, पंखा कूलर रे नीचे बैठा रहवे, पर थोड़ो बारे निकलनो भी जरूरी है ताकि प्रकृति ने जान सको और दुनिया दी समझ ले सको।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्ता एक किस्सो याद आयो है, लो सुनो। एक बार एक छोरो शहर पड़बा गयो। महीना भर बाद घरे आयो। माँ बोली, बेटा शहर में सब ठीक है, कैडो है शहर? बेटो कहो, माँ सब ठीक तो है, पणवटे कोई बिना मतलब हालचाल नहीं पूछे। माँ हंसने बोली, इन वास्ते ही तो गांव एक परिवार होवे, जठे लोग मतलब सु नहीं दिल सु जुड़िया होवे। कितनी साची बात है दोस्ता, आज आदमी कमाई तो कर रियो है, पर अपनापन थोड़ो थोड़ो खो दियो है।

0: बेटा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोतावा आप सुन रहे हो 102.1 मेगा हर्ट्ज माथे कार्यक्रम मनवार। आज मैं हूं आपरे सागे साक्षी परिहार। दोस्तां मारे मारवाड़ दी महिलावां घर संभाले, रिश्ता निभावे, त्योहार सजावे और हर दुख में परिवार रो हौसलो बने। साच पूछा तो घर री असली ताकत माँ अर बीनणी ही होवे, विने बिना घर घर नहीं लागे।

मारवाड़ में त्योहार रो मतलब केवल छुट्टी नहीं होवे, त्योहार मतलब मिलनो, हंसनो, दुख बांटनो, सुख बांटनो। तीज आवे तो झूला, गणगौर आवे तो गीत, दिवाली आवे तो रोशनी, अरे होली में तो पूरो गांव रंग में रंग जावे।

तो श्रोताओं, आज रो और एक घंटों अबे विदा लेवन वालो है। उम्मीद है थाने आज री बाता में अपनापन महसूस हुयो होला। हंसता रहो, अपना लोगा सु जुड़िया रहो और अपनी भाषा अपनी मिट्टी ने कदे मत भूलो। आज मैं थी आपरे सागे साक्षी परिहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनवाद, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का

0: सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और वीकरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

धरती कहे पुकार के इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मजनू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: एस डी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत था। रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिन

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

घबराना, टल गया समय इंतजार का।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

जाओ, जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार, और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है, तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत, दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे, ये बिंदिया जब जब चमकती है दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है और तस्वीर में वो बात कहाँ, कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है, काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है, खोलती ऐसे राज दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है, ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े, दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले, ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को, संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओ, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। इशारा फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाए ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कल कल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते, और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम। आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपने तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा, तो हम चलते हैं का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

शुदा, उस साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: सखियों कहती हैं बातें तो जुबा से सब करती हैं, मजा तो तब है जब आंखी सीधी दिल से गुफ्तगू करी। जी हाँ, और बात जब दिल की होती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम हमारी प्यारी प्यारी सखियों से जुड़ जाएं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। क्यों जोसना?
1: बिल्कुल खुशबू, क्या बात है, आज आपकी आंखें बहुत चमक रही हैं, बहुत खुश लग रही है आप शायद।
0: हाँ जोसना, ये बात आपने बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: फिर
0: कही
1: इसका
0: है।
1: राज भी तो बताइए हमें।
0: इसका राज ना बहुत गहरा है, और यही राज का जो आज टॉपिक भी हमारा रहने वाला है, जो हम हमारी सखियों के साथ में आज शेयर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। पहले आपने अगर पूछ ही लिया है कि मेरी आंखें बहुत चमक रही है, मैं खुश हूँ, रियल में मैं खुश हूँ, क्योंकि हम

0: लोगों ने ना समर वेकेशन के अकॉर्डिंग घूमने का प्लान बनाया है।
1: अच्छा।
0: जगह थोड़ी सी सीक्रेट है, बट हाँ ये है कि घूमने का प्लान बनाया है तो दिल बहुत खुश है कि कहीं जाने के लिए मिलेगा, प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा, सुंदरता देखने को मिलेगी,
1: छुट्टियों का पूरा पूरा लुत्फ उठाने वाली है।
0: बिल्कुल, और इस भरी दोपहरी से भरी गर्मी से कुछ समय के लिए राहत तो मिलने वाली है।
1: तो सखियों, इस कार्यक्रम में हम इसी बात को और भी आगे बढ़ाएंगे, गुफ्तगू करते जाएंगे और टटोलेंगे कि इस खामोश जो जुबां है, आंखों की चमक है, उसके बारे में और सुनेंगे खूब सारे सुंदर सुंदर सदाबहार नगमे और करेंगे बातें दिल से दिल तक की।
0: बिल्कुल, लेकिन दिल से दिल तक बातों को थोड़ा सा पॉज लगाते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: बिल्कुल सखियो, आंखें दिल की जुबा ही नहीं बल्कि मन का आईना भी होती है, क्यों जोसा? जैसे कि आपने मेरी आंखें देखकर बोल दिया था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना? तो सखियो ये बिल्कुल सही है कि आपने कहावत भी सुनी होगी कि आंखें मन का आईना होती है, तो ये एक शाश्वत सत्य भी है, पता है जोसा? क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना, वो चाहे अपने शब्दों से कितना ही झूठ बोले लेकिन उसकी आंखें कभी भी नहीं झूठ बोल सकती ना,
1: चाहे वो सच बयां कर ही देती है।
0: बिल्कुल, चाहे वो खुश हो, चाहे दुखी हो, उदास हो, कैसी भी टाइप का जो मन की जो भावनाएं होती है ना, वो आंखों से कहीं ना कहीं अभिव्यक्त हो ही जाती
1: जी,
0: है।
1: क्योंकि ये जो हमारी आंखों की पुतलियां हैं वो दिखती तो भले किसी की नीली है, किसी की काली है, किसी की बुरी है, पर ये एक ऐसा पारदर्शी शीशा है जिसपे इंसान का चरित्र और उसकी नीयत साफ साफ दिखाई देती है। अगर हमें किसी व्यक्ति को सच में समझना है तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी अभिव्यक्ति पर, उसकी आंखों की अभिव्यक्ति पर गौर फरमाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए हमारा तो ये जो प्रोग्राम है ना नारी वाटी का, ये हमारी नारियों के अस्तित्व से ही जुड़ा है, है ना? और कहते हैं कि हर एक नारी की आंखें भी कुछ कहती है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और इन्हीं आंखों की सच्चाई के बारे में और बातें करेंगे कि आखिर हर एक नारी की आंखें कहती क्या है। लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

0: खुशबू हम बात कर रहे थे आंखों की और आंखें तो हमारे अंतर्मन का द्वार होता है मतलब हमारी इनर वॉइस होती है
1: बिल्कुल
0: और नारी की आंखें केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं होती बल्कि ये उसके मन की भावनाओं और संवेदनाओं का सच्चा आईना होती है कहा जाता है ना कि आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं तो नारी की आंखों में भी उसके संघर्ष सपने और जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते हैं
1: बिल्कुल क्या बात कही है ज्योत्सना और हर एक नारी की जो आंखें होती है ना वो अगर हम पढ़ना चाहें या अगर कोई पढ़े तो उसमें 100 राज दिखाई देंगे है ना और हर एक नारी देखिए नारी के बहुत सारे रूप होते हैं माँ पत्नी बेटी बहन इन सबके रूप में होते हैं तो हर एक रूप की अपनी एक अलग कहानी होती है जो उसकी आंखों से बयां होती है ठीक है और सबसे पहले अगर हम बात करें माँ की आंखें है ना तो माँ की आंखें क्या कहती है माँ की आंखें कहती है त्याग की परछाई की मूरत जी हाँ अगर हम खुद
0: बिल्कुल
1: कभी अपनी मदर की आंखों में देखे ना तो आप देखना कि कितनी सारी
0: ममता भरी होती है
1: ममता भरी होती है त्याग भरी होती है और कई बार तो ऐसा लगता है जब हम खुद मदर बनते हैं ना तो हमें एहसास होता है कि हमारी माओ ने अपने अस्तित्व को भुलाकर हमें निखारने के लिए कितना कुछ बदला है
0: साथ में बेटी के लिए भी यही होता है कि वो अपने मदर के लिए हमेशा तत्पर रहती है उसकी आंखों में हमेशा यही रहता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं
1: जी और पत्नी की आंखों की बात करें तो देखिए उनकी आंखें कुछ अलग जो है वो चीजें बयां करती है एक पूरा घर संसार छोड़कर जब लड़की अपनी ससुराल आती है और एक पूरे नए घर को संभालती है तो देखिए ये कितना अलग चीज होती है ना
0: वो
1: कि
0: आती है और उसके मन की जो उथल पुथल होती है दुविधाएं होती हैं और उसकी जो यादें होती हैं वो भी उसकी आंखों में चमकती हैं
1: बिल्कुल तो कहीं ना कहीं एक पत्नी की आंखें जो होती है ना उनकी जो परछाई है वो अनकही समझौतों और उम्मीदों को दर्शाती है
0: और आज की नारी जो आधुनिक नारी है वो आत्मनिर्भर और सशक्त है तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास भी पूरा पूरा झलकता है
1: ये सबसे अच्छी बात है आजकल की जो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है ना उस इस पीढ़ी की जो नारियां हैं वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर है लेकिन उनकी आंखों में भी अगर कभी हम झांककर देखें ना तो एक संघर्ष की कहानी नजर आती है ना कि जॉब भी करना है
0: घर
1: भी संभालना है बच्चे भी संभालने हैं उनका करियर भी बनाना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके मन में चल रही होती है उनके मन की भावनाएं ये होती है लेकिन वो कभी व्यक्त नहीं कर पाती लेकिन उनकी आंखों में हम जरूर पढ़ सकते हैं

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ सखियो, और इस ब्रेक से पहले बहुत ही प्यारा सा गाना हमने सुना था, अखियों की जरों की सी, जो सा कितना प्यारा गाना है ना ये, मतलब हमेशा जब भी मैं सुनती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि अगर ये जरों की ये खिड़कियां अगर नहीं होती ना तो शायद हम इतनी सुंदर दुनिया को कैसे देखते, देख नहीं पाती, तो हमारा जो सपना है वो एक सपना अधूरा रह जाता कि दुनिया कैसी है, प्रकृति की रंग कैसी है और हमारी आसपास की जो दुनिया है ये कैसी दिखती है।
2: हमारा शरीर का अहम हिस्सा है हमारी आंखें, बहुत छोटा सा हिस्सा है पर इसके बिना तो जीवन जैसे कल्पना ही करना अधूरा हो जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और ये जो झरोखे हैं ना वो हमारे मन को अच्छे से अभिव्यक्त भी करते हैं।
1: क्या बात है।
2: जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है
1: और अगर उदास होते हैं या फिर कोई दुख होता है हमें तो हमारी आंखें छलक उठती है,
2: आंसू बनकर बह जाते हैं और तो कभी घूरती निगाहों से अनकहे सवाल भी छोड़ जाती है। अगर मन में कोई दुविधा हो तो बेचैन सी इधर उधर डोलती रहती हैं।
1: बिल्कुल।
2: और अगर मन में बे इंतहा मोहब्बत हो तो बिना शब्दों के सब कुछ कह जाती हैं। और कभी किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ शरारत करनी हो तो मन मन मुस्काती हैं ये आंखें। और अगर कहीं किसी चीज का डर हो तो साय अपनी साय में, डर के साय में ही अपनी चमक खो बैठती हैं। आंखें भावनाओं का वह आईना है जहां दिल की हर कहानी बिना आवाज के सुनी जा सकती है।
1: बिल्कुल। और देखिए कि ये जो आंखें होती है ना, ये आंखें भी पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना, हर कोई नहीं पढ़ सकता। और एक जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं हमारी लाइफ से वो ये कि हमारा जो भी जीवन साथी है ना वो हमारी आंखें जरूर पढ़े कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम बेचैन है नहीं है, किस तरह की भावनाएं हमारे मन में चल रही है, तो हमारा जो लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है वो हमें जरूर समझे और हमारी आंखें पढ़े और हमारे मन की खामोशी को जाने, हमारे मन की भावनाओं को जाने, है ना। और कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक खास चेहरा जरूर होता है जो हमारी आंखों में बसा होता है। हर किसी की जीवन में खास चेहरा होता है जो मन में बसा होता है और उस चेहरे को देखकर शायद हमारी मन की अभिव्यक्ति अपने आप ही हमारी आंखों में दिखाई पड़ने लगती है।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: खुशबू ये आंखें तुम्हारी हमारी सब कुछ कह जाती हैं। मुस्कान के पीछे छुपा दर्द, दुख, पीड़ा और आंसुओं में भी छुपी कुछ खुशी, ये सब भी कह जाती हैं। क्योंकि ये हमारे मन से सीधे जुड़ी होती हैं, हमारे मन के अवचेतन मन से सीधे जुड़ी होती हैं।
10: और जिसने पता है काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई ये आंखों को पढ़ा कैसे जाए, है ना। बहुत बहुत गहरा टॉपिक है और बहुत गहरा विषय ये भी कि भाई हम कहते हैं कि एक इंसान की आंखों में बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन आखिर वो देखे कैसे? तो पता है इसकी भी एक साइकोलॉजी। अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं, उसकी आंखों पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसकी एक परफेक्ट साइकोलॉजी अगर आपको वो पता लग जाती है ना, तो आप अपने आसपास किसी भी इंसान की आंखें पढ़ सकते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है ये एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं।
9: क्योंकि 80% कम्युनिकेशन तो हमारी आंखें ही कर देती है।
10: बिल्कुल,
9: ये मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। और साथ में हमारी जो आंखें होती है ना, नेचुरल लाइट डिटेक्टर भी होती है। अपन ने बात की थी कि हर झूठ को वो पकड़ लेती है, तो वो लाइट डिटेक्टर ही हो जाती है, चलती फिरती लाइट डिटेक्टर हो जाती है।
10: और पता है लाइट डिटेक्टर कैसे होता है कि जब हम झूठ बोलते ना, तो हमारी आंखें है ना कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। हम एक इंसान की आंखों में
9: मिला ही नहीं पाते, नहीं कर पाते।
10: तो ऐसे में हम पता लगा सकते हैं भाई कहीं ना कहीं ये इंसान हमसे झूठ बोल रहा है।
9: और साथ में इमोशन डिटेक्टर भी तो होती है, जो हमारे सारे इमोशंस को वो इतनी बखूबी पहचान लेती है कि जब शब्द बोले जाते हैं तो उनका अगर वो सच्चे हैं तो पता चल जाता है, झूठे हैं तो पता चल जाता है।
10: काफी बार ना हम देखते हैं कि सामने वाला जो इंसान होता है ना वो झूठी स्माइल पास कर रहा है, इसे कैसे पता लगा सकते हैं? इसे ऐसे पता लगा सकते हैं सखियों कि जब कोई इंसान आपके साथ खुलकर हंसता है ना, तो उसके गाल भी मुस्काते हैं और उसकी आंखें ना मुस्काते मुस्काते बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो ये रियल स्माइल होती है।

0: और अगर कोई अगर कोई इंसान आपके सामने फेक स्माइल पास कर रहा है ना,
1: स्माइल भी छोटी
0: छोटी होगी और उसकी आंखें भी ना बिल्कुल छोटी नहीं होगी,
1: वो नजरें चुरा रही
0: होगी
1: जी। और जब हम कोई इंटरव्यूज देने जाते हैं या हमारी पर्सनालिटी का अगर एक्सेस किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हम सब कुछ बयां कर देती है कि हम नर्वस हैं कि कॉन्फिडेंट है। तो उसमें भी आंखों का सबसे बड़ा स्थान होता है। अगर हमारी जो नज़रें झुकी हुई हैं तो शर्म से या नर्वसनेस किस कारण होती है, और अगर आत्मविश्वास है तो वो सीधी नज़र होती है,
0: बिल्कुल
1: कॉन्स्टेंट रहती है।
0: और हमारी जो आंखें होती है ना, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा प्रमाण होती है, प्रमाण होती है कि अगर आप आई कॉन्टेक्ट बराबर लेकर चल रहे हैं ना, तो सामने वाला इंसान भाप लेता है कि नहीं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है। ये तो थी साइकोलॉजिकल बातें है ना जोत्सना। अब हमारी सखियों को हम बताते हैं कि भाई हमारी जो आंखें होती है ना, उसका एक साइंटिफिक दृष्टिकोण भी होता है कि हमारी आंखें एक्चुअल में काम कैसे करती है। दो आंखें हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही गहरी, इसके पीछे साइंटिफिक दृष्टिकोण है। और इनसे हमें दिखाई कैसे देता है ये जरा सा हम हमारी सखियों को बता दें कि भाई जब भी हमारी आंखें जो होती है वो किसी चीज को देखना चाहती है, तो जो प्रकाश होता है उसकी किरणें किसी वस्तु से टकराकर आंखों में बसे लेंस से गुजरती है, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। और इसके बाद भी देखिए, पूरा नहीं हुआ, इसके बाद में ऑप्टिक नर्व्स होती है छोटी छोटी, जो इस संदेश को हमारी मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचाती है, और मस्तिष्क उस छवि को, उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो दिखता है ना वो उल्टी इमेज होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है आंखों को कि जो हमें दिखता है ना वो उल्टा होता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना उसे कन्वर्ट करके सीधा दिखाता है।
1: जैसे हमारी मिरर इमेज होती है जो वो उल्टी होती है, पर हमें बाद में उसको सीधा देखने को मिलता है,
0: सीधा देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट है सखियों आंखों के बारे में। तो अपनी आंखों की केयर भी हमें करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगी, डिस्कस करेंगी, लेकिन फिलहाल ले चलते हैं आपको इस प्यारी से म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: खुशबू, ये दो आंखें हमेशा पेयर में काम करती हैं, ये झुकी झुकी से जो नजरें हैं एक साथ झुकती भी हैं और एक साथ उठती भी हैं आत्मविश्वास से। इनकी जो पेयरिंग है ना और टाइमिंग है वो हमेशा अद्भुत रहती है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो दो आंखों की तरह निभाना चाहिए, जो एक साथ सोती हैं, एक साथ जगती हैं और एक साथ हंसती भी हैं और एक साथ रोती भी हैं। अगर एक आंख में आंसू आ जाए तो दूसरी खुद ब खुद भर आती है। आंखें कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती खुशबू, बस साथ रहती हैं। जीवन का कोई रिश्ता, कोई भी रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, ना ये मैं कि ये ज़्यादा और तुम कम, ना कोई हिसाब किताब, बस साथ हो, एहसास हो और एक दूसरे का दर्द समझने की आदत हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते अल्फाजों से नहीं एहसासों से चलते हैं।
1: क्या बात कही है ज्योत्सना। और देखिए, आंखें तो हमें इस खूबसूरत दुनिया और प्रकृति के रंगों को दिखाने का सौभाग्य भी देती है, और ऐसी ही बातें जो है वो हमारी कला, कविता और साहित्य में भी लिखी गई है। आंखों की खूबसूरती को और उसकी भाषा को हमेशा कला और साहित्य में पहला स्थान मिला है। देखिए, बहुत सारी शायरियाँ ऐसी है, बहुत सारी कविताएं ऐसी है जो आंखों से ही शुरू होती है और आंखों पर ही खत्म होती है।
0: और इनके बहुत सारे नाम भी हैं, नेत्र, नयन, चक्षु, नैना, इन सबको, इन शब्दों को भी यूज करके हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने बने हैं।
1: और देखिए, नैना पे, आंखों पे, आपने सही कहा कि इतनी सारी गाने भरे पड़े हमारे बॉलीवुड में, और इन गानों को अगर हम सुने ना तो एक अलग दुनिया हमें उन दो नैना से दिखाई देती है।
0: और क्योंकि जो बातें लफ्जों के दायरे में नहीं आती, उसे मट पाती, उसे आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं।
1: और देखिए, अब पलक झपकते ही हमारा जो समय है वो भी निकलता जा रहा है, तो क्यों ना सखियों का एक और प्यारा सा गाना सुनाया जाए।

0: जी हाँ सखियों, हमारी जो दो नैना है ये कोई ना कोई कहानी जरूर बयां करती हैं, हर रोज करती हैं, हर पल करती हैं, हर दिन करती हैं, लेकिन ये
1: इनका
0: कहानी
1: ख्याल भी रखना
0: इनका
1: पड़ता है।
0: ख्याल भी रखना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे दो नैना कहानी बयां कर रहे हैं तो इनका ख्याल रखना भी तो हमारा ही कर्तव्य है ना। और जो सर देखिए आजकल की जो ये मॉडर्न लाइफ

0: ऑनलाइन है, तो हम सभी को पता है कि हम लोग डिजिटल गैजेट्स का यूज करते हैं, कंप्यूटर मोबाइल्स सब हम लोगों के हाथ में आजकल है ना, चाहे वो
1: स्क्रीन टाइम बढ़ गया है,
0: चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक गांव की महिला हो, शहर की महिला हो, है ना, या फिर और आधुनिक नारी तो जो है वो
1: सारा काम भी तो इसी पर है,
0: काम भी टिका है, जॉब भी करते हैं, तो घंटों तक हम स्क्रीन्स का उपयोग करती हैं। तो ऐसे में सखियों बहुत ज्यादा जो है घातक प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है,
1: थक जाती है
0: हमारी आंखें। और कई बार तो ऐसा होता है ना ज्योत्सना कि हम लोग जो घरेलू महिलाएं भी होती है ना, तो हमें भी इतना टाइम नहीं मिलता कि हम हमारी आंखों की केयर कर पाए। काफी टाइम बाद हमें लगता है कि नहीं हमारी आंखों में दर्द हो रहा है, या हमारी नजर थोड़ी कमजोर हो रही है, या आंखों में जलन जैसा कुछ हो रहा है,
1: धुंधलापन हो रहा है।
0: तो ये सारी चीजें ना हम भी काफी बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो दो आंखें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है।
1: जी, बीच बीच में थोड़ा गैप भी लेना चाहिए, 20-20 सेकंड का गैप ले लेना चाहिए। अगर हम बहुत कंटिन्यू ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कंप्यूटर्स के लिए काम कर रहे हैं तो बीच बीच में गैप लेते रहने चाहिए। साथ साथ में आंखों का व्यायाम भी करना चाहिए, जैसे बीच बीच में उसको घुमा लिया, इधर से आंखें कर ली या बंद करके बैठ गए, और कई ब्यूटी टिप्स भी अपनाने चाहिए।
0: ये जैसे आपने 20-20 मिनट का बोला ना, तो जो है कि 20-20-20 का रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आप स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद में 20 फीट की दूरी से और 20 सेकंड तक किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखें, है ना। तो ये 20-20 का रूल आपकी आईज को बहुत ज्यादा सूद करता है, बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम कर सकते हैं घर पे, हमारी सारी सखियां कर सकती है, कि अपनी आंखों का ख्याल आप रखें खान पान के जरिए। जी हाँ, संतुलित आहार आप ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, गाजर, विटामिन से युक्त जितना भी खाना आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है आपकी आंखों के लिए।
1: भोजन लीजिए,
0: हाँ, खूब सारा पानी पिए, खुद को हाइड्रेट रखें। तो अगर आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे ना, तो बाहर जो हमारी सूर्य देवता विराजमान है, जो इतनी गर्मी बरसा रहे हैं,
1: उनसे भी जलती है, तो गॉगल्स लेकर भी निकलना चाहिए।
0: हाँ, तो ये सारी चीजें हम छोटी छोटी करके हमारी आईज का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपकी आंखें जल रही है तो आप रोज वाटर डाल सकते हैं, गुलाब जल,
1: ठंडे
0: पानी से भी धो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें करके आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: खुशबू जग की खूबसूरती दिखाती है, आँखें कुदरत के हर प्राणी में नजर आती हैं। आँखें हैं तो सब कुछ है, रोज कितनी खुशियाँ दे जाती हैं आँखें। ये होती तो खुद तो है, होती है ब्लैक एंड वाइट, पर हम दुनिया हमें रंगीन दिखाती है।
5: जोसना कहते हैं ना कि आँखें केवल अंग ही नहीं अस्तित्व का आधार है, इस सुंदर सी सृष्टि का अनमोल सा उपहार है।
4: बिल्कुल, आँखें तो आँखें है ना, तो सब कुछ है, ईश्वर का ये नायाब तोहफा है। आंखें हैं तो सब कुछ है, नेत्रदान करके भी हम किसी और के जीवन में खुशियां भर सकते हैं।
5: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो अनमोल सा उपहार हमें ईश्वर ने दिया है, काफी सारे लोग होते हैं ना जिन्हें हम देखते हैं कि वो इस उपहार से वंचित है। जिस सुंदरता का आनंद हम ले सकते हैं हमारी तो आंखों से, काफी सारे लोग नहीं ले पाते हैं। और उसका एक बहुत ही अच्छा ये तोड़ है कि हम नेत्रदान करके उन लोगों को भी इस सुंदरता का आनंद लेने का मौका दे सकते हैं।
4: मरणोपरांत उनको हमारी आंखें भी अमर रहती हैं और साथ में उनको भी नया जीवन मिल जाता है।
5: नया जीवन मिलता है। और देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है ना, आप अभी से ही अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और मरणोपरांत जो भी आप के रिलेटिव है आप उन्हें पहले से ही इसके बारे में सचेत कर सकते हैं कि नहीं मेरी इच्छा है कि मैं आई डोनेट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो इस विषय को लेकर वो आज से नहीं बल्कि अभी से ही विचार कर सकते हैं कि आने वाली समय में आपकी दो आंखें किसी और को इस मौके को जरूर दें कि वो अपने आसपास की सुंदरता को देख पाएं और ईश्वर के इस अनमोल तोहफे का आनंद भी ले पाएं।

0: खुशबू, हमने हमारी सखियों के साथ बातें की ढेर सारी इस जादुई भाषा के लिए, और हमारा ट्रांसमीटर से सहयोग दिया पीके सेन और पारसपुरी गोस्वामी ने, और कंट्रोल रूम से साथ दिया सुनील जयपाल ने।
1: और हमारी सखियों तक इतनी प्यारी प्यारी म्यूजिकल ट्रैक्स जो है वो

0: कंसोल के जरिए पहुंचाई श्रेया ने. तो सखियों जी हाँ, आज जो हमारी मन की बातें हमने इन आंखों की खिड़कियों की संग की, इन बातों को आप जरूर याद करिएगा. और इसी वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में आप सभी से होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए अपनी सखी खुशबू
1: और ज्योत्सना को दीजिए इजाजत.
0: नमस्कार.
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका. हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज. कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार.
3: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया. पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की. सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए. और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की. दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है.
4: के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है. ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है. बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की.
3: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं. विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है. विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है. डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए. ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें.
4: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं. दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है. तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है. हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं. और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें. हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते.
5: These would be the principles with which we would approach that region.
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है.
6: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है. ये उससे कहीं अधिक व्यापक है. जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है. इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है. हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं.
3: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे. श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है. एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है. ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं. दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा. की। श्री रूबियो की भारत यात्रा

0: ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद

0: भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेई हुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया।

0: पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: तुम इसको खेल समझे हो, मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत इसको।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तेरी दिल में जिस दिल

फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मंजू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी, एस एच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शाहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिन जी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुरई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से, विनोद कुमार आड़िया, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इस गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: खिड़की के पास
1: वहाँ क्यों?
0: अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए, तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
2: हाँ बिटिया,
0: हमारी यही देने चल बैठ सुनी।
1: अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
3: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
1: जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
0: बुदित वो
1: कहाँ?
0: तुमने शायद शैम्पू किया है। वाह कितने खूबसूरत बाल हैं।
1: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
0: सुमन सुमी वो देख, वो देख सुमन देखो
1: कहाँ।
0: कितनी अच्छी लग रही हैं।
4: सच में
0: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
1: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी तैरती हुई चली जा रही है।
0: तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से, न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
1: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप, गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका, जैसे
0: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा का। हाँ तो फ्रेंड्स,
5: यस
0: मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
5: बिल्कुल वेलकम वेलकम।
0: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
5: चंदन?
0: वैसे ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
1: रीमा तू नहीं सुनेगी।
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
6: थ्री चीयर्स फॉर भावी कवित्री।
0: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
1: अरे यार समोसा खाने दो।
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
1: और रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन है वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सुमी?
1: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय
1: बाय फ्रेंड
5: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? वो डू यू मीन, यू मीन सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर,

0: इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
1: अच्छा, और क्या कहती है?
0: कहती है, खिलती कलियां, झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं। जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
1: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
0: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो। अतखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
1: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार वो तो नहीं मिला। खैर, अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया, अचानक ये सब क्या हो रहा है? मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया, क्या बात है?
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुनी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिर का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने के बाद, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बड़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं। रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। और लड़के की बहन मंजू, वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
3: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनील
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी देख तेरी बारात आ गई। सुमी मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
1: नहीं रीमा मुझे छोड़कर मत जाओ।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबरा कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: रीमा छोड़ मुझे। रीमा शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे मीठा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती हूँ, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: अंकल
1: शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ
0: सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घुंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: आइए
0: भाभी अब उधर बैठे, आइए भैया।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ, भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे तैया दुल्हन है कि एकदम जान का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी हो जी, चाय पी लीजिए भैया। आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी हैं, और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं, चारों तरफ भाभी भाभी भाभी। वाह लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
4: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई है, हे भगवान और बहू का क्या होगा। डॉक्टर ने कहा था चांद सी बहू, आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
5: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
4: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ।

0: मैं पागल नहीं
1: हूँ। खुश है यार, क्या
0: मैं पागल नहीं?
2: बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी।
1: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
2: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रहे हैं।
1: क्या कह रही है?
2: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, चाची बुआ साबुन पकड़े हुए हैं।

0: चाची बुआ साबुन ही पकड़े हुए हैं।
1: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ। उसे डॉक्टर के यहाँ तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा।
1: भाभी, राहुल, विकी, तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो। मंजू, तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी।
1: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी। भाभी, ताई जी संभालिए भैया को। भाभी, भाभी, ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
2: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं, या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
0: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
2: तो फिर?
0: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
2: ट्रेजेडी?
0: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
2: वहाँ ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
2: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाते रहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
2: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबू जी आ गए हैं।
2: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी टेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी, सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी, क्या हाल है भैया का?
1: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: है?
1: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी?
1: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
2: क्या होगा बाबूजी?
1: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट।

0: करना होगा।
1: राजेश बेटा।
2: जी बाबूजी।
1: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
3: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
1: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
3: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
1: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे।
3: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
1: मंजू, मंजू,
3: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो।
1: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पर देती है।
3: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
1: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
3: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
1: ठीक।
4: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू तो कुछ बोलती क्यों नहीं, रितेश कहाँ है?
5: मम्मी प्लीज, क्या सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगी? सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
4: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
5: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
4: सो जा बेटा, क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
5: आए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
4: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
6: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है, ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
4: ठीक है ठीक है,
6: और घबराने की कोई बात नहीं है।
4: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
5: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
4: ठीक है,
5: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
4: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
5: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
4: धोखा? कैसा धोखा?
5: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते
4: हैं,
5: कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
4: अच्छा,
5: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
4: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भगवान ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सोमी, ये क्या?
5: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
4: क्या?
5: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मामा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
4: अच्छा।
5: अब ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
4: ठीक है।

0: आठ वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपट आती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी और मैंने मुझे बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे मुझे हर वक्त समझाती रहती है, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
1: अंदर आ सकता हूं?
2: ओ आप आइए आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
1: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
2: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
1: यहाँ रहकर भी क्या करूँगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूँ।
0: कैसे तोड़ दूँ? ये दुनिया ये समाज मुझे जीने देगा?
1: समाज समाज फिर वही समाज, क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन
1: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
1: सुमी।
0: और अचित हो?
1: ओ सुमी मैं जीत गया, सुमी मैं जीत गया। शायद चंदन से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है मादक गंध।

अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा
0: 1985 जमाना
1: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
2: क्या
0: 1993 फिल्म

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहां थे
2: जी,
1: तो वहां पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: के फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
1: ना, वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सोतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से,

0: कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी आगे चलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनोज यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके कोलीवाड़ा से आकाश कुरला 1 आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना, 8 में पिक्चर
1: काम बन जाता
0: था, काम बन जाता था।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ प्वाइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से चल रखकर कोने में बैठा हो। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए, मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे, तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, बोले जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, ठीक है कमर्शियल सब्जेक्ट है आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था,
1: हाँ बिल्कुल
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गाने भी इतना है, सब कुछ है, लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
3: बिल्कुल, और थी भी वो
2: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
3: बड़ी स्टार
2: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से।

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होगी। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूं जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा, तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले तो बहुत अच्छा था, और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का।
1: जी जी
2: मैंने कहा ये जो इधर टेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
1: जी जी
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ,
1: जी
2: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूंगा, तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में, तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती है, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5 फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 ही शो किए थे हमने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको सूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है, और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? मैंने जिया जी के पास पूछते अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके, तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहा, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। मैंने सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया, और उन्होंने मुझे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे? मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती है, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेट होगा टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सल हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सबने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, ये आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे दर्शन करनी शुरू हो गए, और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ, और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रू आउट प्ले में है और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा

40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली, क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुमा का दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट? सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल कर दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। वो मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोएट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूंगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पोएट लगूंगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर तो उनके राइटर्स उस प्ले के वो चाहते थे कि वो रोल करे खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूंगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूंगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही है, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूंगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और को, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक

0: जुनून है आपका, अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेज और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मिलियन पे था प्ले, तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिष्ट हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
0: वाह वाह,
1: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी है उसकी।
0: जी जी जी, काबली वाला भी चल रहा है।
1: काबली वाला अलग है, काबली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमल राज की बेटी वो आई परीक्षित थानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने की, वो टाइम अलग था अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
0: मैंने देखा है क्यूट प्ले है।
1: हाँ बहुत अच्छा है, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्षन स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हेना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं कैरेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: साथी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी, टिनिटस भी आना है गर्मी के।

0: वजह से और आपको लैस भी हो जाते हो, अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी हमारे प्राथमिक चैनल से।

0: फिर से इसी प्यार से वीकेंड पर हम आ चुके हैं आप ही का कार्यक्रम युववाणी लेकर, जहाँ आज का दिन होता है बड़ा ही खास। हर वीकेंड आप भी इंतजार करते हैं और हम भी इंतजार करते हैं कि कब ये दिन आएगा और आपसे ढेर सारी बातें होगी। जी हाँ, अभी तो शायद संडे भी इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तो हर दिन संडे जितना अच्छा लग रहा है। पर हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, जो शायद स्कूल के दौर से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, उन्हें तो अपने वेकेशन बड़े याद आते होंगे और ये संडे बड़ा ही प्यारा लगता होगा। आज हम इस संडे को बड़ा ही खूबसूरत बनाएंगे अच्छे अच्छे गाने और अच्छी बातों के साथ। आज थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हिट कराना भी ज़रूरी है क्योंकि हाँ, बात हो और थोड़ा बैक इन द टाइम नहीं जाया जाए तो मज़ा नहीं आता। हाल फिलहाल मेरा नाम है रिद्धि और मेरे साथ है
1: मैं हूँ विकास। तो जैसा कि श्रोता रिद्धि ने बताया कि गर्मी जो है रिद्धि वो भी अपने पीक पर है। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने का जो है वो मन ही नहीं कर रहा है। साथ ही साथ जो है हम एंजॉय करना चाहते हैं संडे को अपने घर पर, या फिर अगर हम बात करें कोई ब्यूटीफुल सा विजिटिंग प्लेस है वहाँ पर जाने को।
0: तो हाँ, अभी तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसी गाने के साथ। और आज किस

ये कहना तो काफी सच होगा कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो सुबह 7 बजे जाने के लिए जो जल्दी उठ के तैयार होना होता था उसमें बड़ा आलस आता था कि यार क्या है, रोज रोज जाना पड़ता है। पर जैसे ही वेकेशन स्टार्ट होते थे, कभी भी ऐसा लगता है कि कहीं समर कैंप लगा है, आपके पेरेंट्स ने आपको वहां पे एनरोल करा दिया, तो जो तैयार होने की स्पीड होती थी भाई साहब, दोनों सेम टाइमिंग होते थे कि ऐसा नहीं है कि एक का टाइम बहुत लेट है, एक का बहुत जल्दी, लगभग सेम टाइम 7-8 बजे सुबह जाते थे। और समर कैंप की एक्साइटमेंट जो होती थी कि पता नहीं क्या सीख के आ जाएंगे।

0: क्या हो जाएगा, तो उसका क्रेज अलग होता था भाई। जैसे ही हम वेकेशन की बात करते हैं तो शायद दिमाग का जो गियर है वो रिवर्स में चला जाता है और वो गाड़ी इतनी पीछे चली जाती है कि लगता है कि यार एक बार और अगर लाइफ में वो वाले वेकेशंस मिले ना तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा रिद्धि आपने। जैसा कि अगर हम बात करें आज की, तो आज भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले की चीज़ें हैं वो आज की जो जनरेशन है वो मिस कर सकती है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि जो हमारे टाइम की जो बात थी, आज से अगर मैं बात करूँ 10-20 साल पहले की, तो उस टाइम जो समर वैकेशंस का लोग बेसब्री से, मतलब स्टूडेंट हो गए या फिर बच्चे हो गए, वो बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि यार कब जो है समर वैकेशंस आए, कब हम काफ़ी सारी नई एक्टिविटीज सीखे, कैंप के अंदर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, या फिर बहुत ही बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता था। लेकिन आज के टाइम में जो है वो काफ़ी समय थोड़ा बदल गया है, क्योंकि काफ़ी सारे गैजेट्स है, टेक्नोलॉजीज है जो आपको घर बैठे बिठाए जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवा रही है ऑनलाइन, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज तो हुई है।
0: हाँ, और कई बार ऐसा भी होता था कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट समर कैंप्स कि आप बाहर जाके सीख रहे हो, पर
1: बिल्कुल
0: घर की भी जो मेमोरीज थी, मतलब
1: एग्जैक्टली
0: जो बचपन में चीज़ें एंजॉय करते थे। एक टाइम था जब मतलब इन्वर्टर्स का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था कि आपके
1: बिल्कुल।
0: घर पे लाइट
1: और
0: जा रही है तो आपके घर पे इन्वर्टर से वापस आपको फील ही नहीं हो रहा कि लाइट गई है। तो बहुत बार ऐसा होता था कि अक्सर अगर रात को लाइट जा रही है, शाम हो गई या फिर लेट नाइट जा रही है।
1: एक चीज, जैसा कि रिद्धि अभी आपने बोला कि दिस इज नॉट अबाउट अ समर कैंप, ये केवल वो ही बात नहीं है, उसमें हमारा जो एक फीलिंग्स रहती थी, जो हमारे वो कहते हैं ना आसपास जो एनवायरनमेंट रहता था वो काफ़ी क्रेजी रहता था। यहाँ पे खूब सारे बच्चे जो होते थे वो एकदम चंचल से होते थे, गेम्स खेलते थे, या एक दूसरे के साथ में जो है एक दूसरे की आर्ट एंड क्राफ्ट में हेल्प करवाते
0: मैं वही
1: थे।
0: तो बता रही हूँ, जैसे
1: बिल्कुल
0: लाइट जाती थी तो सब बच्चे बाहर आ जाते,
1: बिल्कुल
0: गली
1: बिल्कुल
0: के सब बच्चे बाहर आकर गेम्स खेल रहे हैं, और
1: बिल्कुल
0: उस वक्त ये लगता था कि कब लाइट ना आए, क्योंकि लाइट आती तो सबके घर वाले अंदर बुला
1: बिल्कुल
0: लेते कि अब तो
1: बिल्कुल
0: सोने का टाइम हो, सो जाओ। तो वो जो फीलिंग थी कि अरे भाई लाइट थोड़ी देर और बंद रहे, हमको खेलना है, तो
1: बिल्कुल
0: वो वाली फीलिंग। आज के टाइम तो वैसे भी इन्वर्टर्स इतने एडवांस हो गए कि आपको फील ही नहीं होता लाइट जाए,
1: बिल्कुल
0: पर अब तो ये हो गया है कि शायद एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है या बड़े अप्लायंसेस नहीं चल रहे, तो लगता है कि लाइट कब आएगी तो गर्मी कम लगे,
1: बिल्कुल
0: वो इनकन्वीनियंस थोड़ी कम फील हो। पर हाँ, ये तो है कि जब हम छोटे थे तो ये जो इनकन्वीनियंस होती थी ना, इसकी वेट करते थे कि
1: बिल्कुल
0: कब
1: बिल्कुल
0: हो और हम घर के बाहर भागे,
1: तब वो इनकन्वीनियंस भी हमें बहुत अच्छा लगता
0: बहुत
1: था।
0: अच्छी लगती थी। जी हाँ श्रोताओं, आज का जो टॉपिक है वो ये है, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया ऑफ समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियाँ, और शायद हर इंसान के पास इसके किस्से रहेंगे और बात करें उतनी कम है। तो आप भी बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, और हमारे नंबर है 0291-255-3300, और दूसरा नंबर है 255-4300।
1: तो दोस्तों आप भी जल्दी से अपना फोन उठाइए और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ।

0: तो विकास, जैसे कि बात चल रही है समर वेकेशंस की, तो अभी अगर देखा जाए तो हम लोग उस पॉइंट पर खड़े हैं कि बहुत जल्द तो क्या कल ही हमारे यहाँ शुरू हो रहा है नौतपा,
1: जी
0: जिसकी अगर बात की जाए तो अगले जो 9 दिन है उसमें जो गर्मी का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये स्पेसिफिक जो 9 डेज होते हैं, और हमारे राजस्थान में भी, खासकर हमारे शहर जोधपुर में, तो देखें तो इसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है पहले से ही स्टार्ट हो गया है।
1: बिल्कुल
0: पर ये जो आगे 9 दिन आ रहे हैं, इसमें हम सभी को अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं कि बाहर की गर्मी का भी ध्यान रखना होता है, कि बाहर घूमने जाना है या फिर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ये चलते चलते ना दिमाग में हम लोग बाहर निकल जाते हैं, पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, ये बहुत ही ज़्यादा एडवर्स होता है, क्योंकि कई बार लू लगना और ये सब एक दिन का सिम्टम नहीं होती,
1: बिल्कुल।
0: ये धीरे धीरे लगती है, और ये जब होता है तो ये बहुत ख़राब चीज़ होती है।
1: लेकिन ऐसे में रिद्धि हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम सबसे पहले अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको इस बारे में अवेयर करें, साथ ही साथ जो खुद है वो भी हाइड्रेट रहने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि आने वाले जो 9 दिन हैं वो काफ़ी, जहाँ पर जो गर्मी होगी वो काफ़ी पीक पर होगी, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम खुद को मेंटेन रखें, हाइड्रेट रखें। साथ में जो है वो आप एनी टाइम अपने पानी जो है वो कैरी कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप जैसे कि ORS वगैरह जैसी काफ़ी सारी एनर्जेटिक ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं एनर्जी के लिए।
0: ये तो होता है विकास, पर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हम
1: जी
0: हमारा ख्याल तो रखते ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शायद ही कोई इंसान होता है जो खुद का ख्याल ना रखे। पर इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आसपास वालों का ध्यान रखें,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आसपास इंसानों के अलावा जानवर भी
1: जानवर
0: होते
1: भी है।
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: और जितनी रिक्वायरमेंट सर्वाइव करने की पानी की हमको है, उतनी ही
1: बिल्कुल
0: उनको भी
1: बिल्कुल
0: होती है कि साफ पानी का प्रॉपर सोर्स मिले। अगर कोई इंसान कुछ ऐसा कर ना भी पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेस बाहर रखे होते हैं, जिसमें
1: बिल्कुल
0: पानी डालने का कोई पात्र हो गया,

0: या फिर कोई छोटा सा ऐसे बॉक्स यूटेंसिल बाहर रखा होता है, तो हम
1: बिल्कुल
0: देखते हैं कि
1: बिल्कुल,
0: लोग उसमें झूठा खाना डाल देते
1: झूठा
0: हैं,
1: खाना डाल देते
0: बचा
1: हैं,
0: हुआ खाना
1: बिल्कुल
0: डाल देते हैं, ये सोच के कि जानवर उसको खा लेंगे,
1: बिल्कुल
0: पर एक्चुअली वो जो छोटी छोटी ट्रेज होती है वो पानी की होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: लेकिन अगर रिदी एक चीज़ आपने ये भी सही बोली कि लोग ऐसा कर देते हैं, और अगर ऐसा लोग करते भी है तो उनको एक साथ में जो है वो एक अलग से जो है वो एक बॉक्स रख देना चाहिए जहाँ पे उनको पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि अभी विकास ये देखने को मिल रहा है कि आप रैंडमली कहीं जाएंगे ना तो
1: बिल्कुल
0: पक्षी बेहोश हो रहे हैं, तो
1: बिल्कुल,
0: पक्षी के बेहोश होने का कारण यही है कि उन्हें पानी के सोर्स नहीं
1: पानी
0: मिल
1: के
0: रहे,
1: सोर्स नहीं
0: और
1: मिल पा
0: जैसे
1: रहे
0: ही आप
1: हैं।
0: उन पक्षियों पे पानी डालेंगे वो फट से उड़ के उड़ जाएंगे, मतलब उठ के उड़ जाना
1: बिल्कुल
0: हो। तो यही वो
1: बिल्कुल,
0: चीज़ होती है कि उनमें पानी की कमी है,
1: तो
0: प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा पानी
1: बिल्कुल।
0: का।
1: लेकिन दीदी पक्षियों के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने घरों की छत पर जो है वो जो छोटी सी पानी की कुंडी होती है भर के, वो भी रख सकते हैं ताकि जो वो बेजुबान पक्षी है वो आते जाते जो है उनको कोई तकलीफ ना हो, ये भी एक चीज़
0: पक्षी
1: है।
0: हो गए, स्ट्रे एनिमल्स हो गए, तो आपकी
1: बिल्कुल
0: जितनी कोशिश पड़े आप उनके लिए कीजिए, और अगर आपके कार्स के नीचे अगर कोई जानवर सो रहा है, डॉग्स सो रहे हैं, कैट सो रही है, तो उन्हें प्लीज़ ना भगाएं। अगर आपको आपकी गाड़ी निकाल के कहीं जाना है तो आप ज़रूर देखिए कि कार के नीचे कोई जानवर है तो नहीं, अगर उसे बैठा है तो उसे प्लीज़ हटा दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं कि लोगों को पता नहीं होता
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: उनके
1: कहा
0: गाड़ी के
1: आपने,
0: नीचे कोई जानवर
1: क्योंकि
0: है।
1: वो
0: तो
1: बेचारे जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह ढूंढते हैं कि जहां पर उनको ठंडक मिल सके, तो वो ऐसी ही जगह जो है वो प्रीफर करते हैं, चाहे किसी वो पेड़ की छाया में हो, या फिर जैसा कि आपने अभी बताया कि कार हो गए या ट्रक्स हो गए, उनके नीचे जो है वो स्टे करने लग जाते हैं।
0: और ये चीज़ भी है कि जैसे हमें अनकंफर्टेबल फील होता है गर्मी में, इतना
1: बिल्कुल
0: हम एसी कूलर्स में रहते हैं, हम तो बहुत ही फॉर्चुनेट लाइफ जी रहे हैं, पर वो जो छोटे छोटे पपीज होते हैं वो भी बच्चों की तरह होते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनको भी गर्मी लगती है, तो उनको भी कोई सोर्स चाहिए जहाँ पर उन्हें कम्फर्ट मिल जाए। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप खुद की तरफ से कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो बना है उसे ख़राब ना करें, और जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों आज बात चल रही है नॉस्टैल्जिया पे, जो समर वेकेशंस का होता था, नानी के घर जाना, ढेर सारी मस्ती करना, वो एंड मोमेंट पे अपना होमवर्क ख़त्म करना, तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं, और अगर आपके भी ऐसे रहे हो तो आप ज़रूर से फ़ोन करके बता सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया हो कि इन छुट्टियों को कैसे इनोवेटिव बनाया जाए, इसमें
1: बिल्कुल
0: क्या नया किया जाए, तो आप ये चीज़ भी शेयर कर सकते हैं। नंबर हम आपको फिर से बता देते हैं, जो कि है 02912553300, और दूसरा नंबर है 2554300, और हिंदी में बताएं तो ये है 2553300, और दूसरा नंबर है 2554300। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका कॉल का, जब तक आप एंजॉय कीजिए ये वाले ट्रैक्स।

0: कुड़ी नशे सी चढ़ गई।
1: तो श्रोताओं, स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम युववाणी में। जैसा कि अभी रिद्धि ने थोड़ी देर पहले बताया था कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, यानी कि आप भी अपना जो समर वैकेशंस का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे नंबर है 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
2: तो विकास, आज जो हमारी बात चल रही है ये टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, तो आपकी कोई बता सकते हैं आप अपनी मेमोरीज जो आपकी समर वेकेशंस में रही हो, जो आज भी अगर आप याद करें तो एक छोटी सी स्माइल आपके फेस पे आती हो?
1: बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है रिद्धि, लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूँ उन एक मेमोरीज की, तो ये है कि उस टाइम जो हमने हमारी जो वैकेशन थे, अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो एंजॉय करी। यानी कि वो जो फ्रेंड्स थे, जो कहते हैं स्कूल फ्रेंड्स थे, जो आपने मिसिंग वाली चीज़ थी वो मैं कहना चाहूँगा कि उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, उनके साथ जो हमारी मेमोरीज बनी, चाहे वो गेम्स को लेकर हो, चाहे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर हो, या कोई भी एक्टिविटीज़ को लेकर हो, तो वो मेमोरी जो है वो हम आज भी मिस करते हैं कि यार काश हम भी वो वैकेशंस जो है वो एन्जॉय कर पाते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब हम थोड़े से जो है वो बड़े हो गए हैं, और साथ ही साथ हमारे जॉब प्रोफेशन में हम लोग एंटर कर गए हैं, तो हमारे लिए जो समर वैकेशन वाला जो स्लॉट है वो काफ़ी कम हो चुका है। जैसे कि पहले हमें जो है वो आफ्टर एग्ज़ाम, यानी स्कूल के एग्ज़ाम्स के बाद में या बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद में जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम मिलता था, तो ये चीज़ें मैं मिस करता हूँ।
2: तो विकास, ये जो बातें हैं ये ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ बड़ी ही खूबसूरत होती जाए। और दूसरी चीज़ ये है,
1: बिल्कुल
2: मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एसेंस है मासूमियत का,
1: बिल्कुल
2: वो
1: बिल्कुल
2: कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जैसा आपने बताया कि वो थोड़ी सी पीछे जाती चीज़ें, बट मुझे लगता है कि एसेंस कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए,
1: बिल्कुल
2: इनोसेंस
1: बिल्कुल
2: ख़त्म नहीं होना चाहिए, बचपना ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको पूरे पूरे वेकेशंस ना भी मिल रहे हो ना, तो एटलीस्ट जो आपका संडे आता है उसको भरपूर इंजॉय कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ी ऐसी चीज़ें करके जो शायद बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेंस ना बनाती हो। दिन भर नींद लेना है, दिन भर किसी एक गेम को खेलना, दिन भर मूवीज़ देखना है, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना।
1: और मैं तो ये कहता हूँ रिद्धि कि अगर चलो आप उस टाइम को मिस करते हैं, तो आप अपने भांजे या भांजी, भतीजा या भतीजी के साथ में जो है वो उनके साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अगर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम देके अपनी जो मेमोरीज है वो रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास जो अपने रिलेशन में जो बच्चे हैं, या फिर आपके जो नेबर्स के बच्चे हैं, उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जो है वो आप अपने जो कहते हैं ना ओल्ड डेज को जो है वो याद कर सकते हो।
2: हाँ, और अगर साथ में कोई ना भी हो ना विकास, तो मुझे लगता
1: बिल्कुल
2: है इंसान की सबसे बेस्ट कंपनी होती है वो खुद।
1: बिल्कुल
2: मतलब आपको आसपास कोई नहीं हो ना, तो खुद से एंजॉय करना सीखे। मतलब और वो होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ ऐसी पुरानी करते हैं, आप उसे रिवाइज करते हैं, कोई पुरानी किताब पढ़ते
1: बिल्कुल
2: हैं, कोई
1: बिल्कुल
2: पुराने बोर्ड गेम्स खेलते हैं। मतलब छोटे थे तब तो नहीं खेलना आता था कि कैसे दो जनों का गेम आप एक साथ खेल सकते हो, पर हाँ अब तो ऑप्शन आ गए कि आप खुद से भी खेल सकते हो, आप खुद खुद के माइंड प्रोसेस से भी चीज़ें
1: बिल्कुल
2: सीख
1: सही कहा
2: सकते हो।
1: आपने रिद्धि। और जैसा कि आपने अभी एक्टिविटी की बात करी कि जैसे सिंगल टाइम जो है, यानी कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें, तो पहले हम आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो गए, या फिर प्लांटेशन हो गया, वो सारी चीज़ें जो है हम करते थे समर्स में।

0: लेकिन आज मैं अगर बात करूँ तो आप उन चीज़ों को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप जो है गार्डनिंग ज़रूर करें, साथ ही साथ में जो है वो आप ब्यूटीफुल प्लांट्स जो है वो अपने रूम में सजा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो कि इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो जो ग्रो करते हैं वो छाया के अंदर ही करते हैं, तो शेडो के अंदर ही करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आप अपने आसपास लगा सकते हो अपने खाली टाइम में। फिर आपने बात करी बुक्स की, तो जो भी आपके पास जो पुराने नॉवेल्स हैं या फिर बुक्स हैं उनको आप वापस रीड आउट कर सकते हो, या फिर अपनी डिक्शनरी में जो है वो न्यू नॉवेल्स हो गई या नई नई चीज़ें जो है वो आप ऐड कर सकते हो।
1: हाँ, और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम जैसे बता रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को आप वापस जिए, तो लोगों को लगता होगा कि क्या बचपने वाली बातें हैं कि स्केचिंग कर लो, ड्राइंग कर लो. पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉट्स होते हैं जिसमें हम
0: बिल्कुल
1: गमले लगाते
0: बिल्कुल
1: हैं, अगर हम उन्हें पेंट करके रखें, मतलब वो
0: बिल्कुल
1: लगेगा तो ऐसा कि क्या चीज़ है, पर अगर हम उसे पेंट करके रखें, कहीं घर में सजा के रखें, तो वो एक याद है जो हमेशा हमारे साथ रहती है.
0: बिल्कुल दीदी। और ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा या कहीं स्पेसिफिक जो है कहीं क्लासेस लेनी पड़ेगी। आपको घर बैठे बिठाए अपने मोबाइल फोन में काफ़ी सारी सोशल साइट्स हैं, वहाँ पे आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा कि किस तरीके से जो है वो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है वो
1: इन्वेस्ट कर
0: तैयार
1: सकते
0: बिल्कुल अपना टाइम
1: हैं.
0: इन्वेस्ट कर सकते हैं। या ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको सोशल मीडिया पर आजकल देखने को मिल रही है और लोग उससे सीख भी रहे हैं।
1: और सच मानिए दोस्तों, जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. तो हाँ, ये ज़रूर अच्छी बातें हैं. और जब वो पौधे ग्रो करते हैं, हमारे घर में हरियाली फैलती है, तो सच मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें पेड़ तो कम हो ही रहे, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि उसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि शायद पेड़ों की धरती थी ये, तो हम हैं जो कॉन्क्रीट जंगल्स बनाते जा रहे हैं, और फिर हम ही
0: बिल्कुल
1: शिकायत करते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, सोलर लेवल है, जो हीट लेवल है वो इतना बढ़ता जा रहा है, तो जिम्मेदार हम ही हैं. और अगर
0: बिल्कुल,
1: हम
0: वो कहते हैं ना
1: चाहें,
0: कि जितना हम उनसे लेते हैं तो
1: हाँ,
0: उतना ही हमें देना भी
1: रिटर्न
0: पड़ता
1: करना
0: है।
1: चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और उतने लेवल पर अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाइए, छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, जिससे आप खुश हो सके, आपके आसपास हरियाली और खुशबू रह सके, आपके आसपास फ्रेशनेस रह सके. तो जी हाँ दोस्तों, बात चल रही है समर वेकेशंस की, नए नए आइडियाज़ इनोवेशंस की, तो आप भी हमें ज़रूर बता सकते हैं. हमारे नंबर फिर से दोहरा रहे हैं, जो कि है 0291-255-3300, और दूसरा नंबर है 255-43300.

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए सत्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: आया कि हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है।
3: बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारा जो श्रोताओं से क्वेश्चन है वो एक ये भी है कि आप समर वेकेशंस में जो है वो कहाँ कहाँ घूमना जो है वो पसंद कर सकते हैं। स्पेसिफिक काफी ऐसे सारे रीजन है जहाँ आप प्रीफर कर सकते हैं, और अगर आप ऐसी जगह घूम कर आए हैं या फिर घूमना चाहते हैं या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं हमारे इन नंबर्स पर जो कि है 02912553300 और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
2: तो विकास, मैं ये बात कर रही थी कि हमारा जो इंडिया है वो इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी डेस्टिनेशंस है घूमने की और इतनी नई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलग अलग फोर्ट्स है, अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स है, इतना आर्ट कल्चर इतना वाइड है।
3: अगर आप रीति, अगर आप एक एक स्ट्रीट को भी अगर कवर करें तो भी आपको काफी समय लग जाए क्योंकि इतनी सारी ब्यूटीफुल प्लेसेज है, हिस्टोरिकल प्लेसेज है, या फिर जैसा कि अभी आपने बताया कि चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो या फिर हमारा वेस्ट ही क्यों ना हो, तो काफी सारी ऐसी प्लेसेज है जो कि बहुत ही प्यारी है।
2: अगर हम हमारे राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में भी सिर्फ कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बहुत फेमस है, जैसे जयपुर है, उदयपुर, हमारा जोधपुर खुद है,
3: जैसलमेर है।
2: हाँ, अब इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारी प्यारी जगहें हैं जहाँ पर घूम सकते हैं, जैसे कि हम नवलगढ़ हो गया, फतेहपुर हो गया, यहाँ की पुरानी हवेलियां हो गई और डेजर्ट,
3: वहाँ की जो कलाकृतियां हो गई, वहाँ का जो आर्ट हो गया है तो वो आपको देखने को मिलेगा।
2: हाँ, तो वैसे बहुत सारे ऐसे डेजर्ट वाली प्लेसेस है जैसलमेर के अलावा जहाँ पर जाके देख सकते हैं, डेजर्ट देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आप साउथ में जाओ, साउथ ऑफ राजस्थान जाओ, तो वहाँ पर राजसमंद है और बहुत प्यारी प्यारी जगहें हैं जहाँ पर हम घूम कर नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए मंदिर और साथ में कल्चर हेरिटेज बहुत प्यारा है राजस्थान का भी। इसी के साथ देखा जाए तो दूसरे स्टेट्स है उनमें भी बहुत सारी नई चीज़ें,
3: चाहे वो उदयपुर हो या फिर जैसा कि अभी आपने बोला राजसमंद है। तो साथ ही साथ आपको भगवान के जो मंदिर के साथ साथ जो है वो आपको ब्यूटीफुल नेचर के जो व्यूज है वो भी काफी सारे देखने को मिलेंगे।
2: हाँ, और साथ ही में ये चीज भी है कि ये तो सिर्फ राजस्थान की बात है, अगर दूसरे स्टेट्स देखें तो उनमें भी बहुत कुछ है नया एक्सप्लोर करने को। वो सिर्फ आपकी सोशल मीडिया पे आने वाली 2-3 जगहें हैं जिनको आपने फिक्स कर लिया है कि यहाँ तो घूमने जाना ही है, ये हमारी टूरिस्ट लिस्ट में है, तो आप जरूर से समय निकाल कर समर वेकेशन के अलावा जाइए क्योंकि उस वक्त वो जगह बहुत खूबसूरत होती है। बस हाँ, अभी जो इतनी भी जगह है जो बहुत ओवर क्राउडेड है उन्हें प्लीज और क्राउड में ना जाए, अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा उसे और खूबसूरत बनाइए,
3: पीसफुल प्लेस पर जो है वो जाना प्रीफर कीजिए, या फिर जहां पर आपको कहते हैं ना कि काफी सारी जगह ऐसी देखी हूं मैंने दीदी जहां का जो रास्ता होता है वो भी कहते हैं ना इतना ब्यूटीफुल होता है ना कि आप उसको बहुत अच्छी तरह, उस जर्नी को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि राजसमंद, जैसा कि आपने बोला, उसके नियर बाई में कुंभलगढ़ नाम का प्लेस है, तो बहुत ही प्यारा जगह है। साथ ही साथ जो है वो बारिश के मौसम में जो इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा लगता है, वो कहते हैं कि वहां का जो वो मेवाड़ की आंख बोला जाता है उसे, यानी कि इतनी हाइट पर है वो, जहां से पुराने समय में, यानी कि जब हमारा, अगर मैं पुराने इतिहास की बात करूं तो वहां पर जो राजा महाराजा होते थे वो उस किले से जो है वो पूरे मेवाड़ पर आंख यानी कि नजर रखा करते थे। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं, यूनिक सी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए,
2: बिल्कुल देखनी चाहिए। और साथ ही में जो क्वालिटी टाइम है जो हम हमारे फैमिली के साथ निकालना चाहते हैं वो ट्रस्ट मी वो ऐसी जगहों पर आता है जहां पर सिर्फ आप लोग हो। आप बहुत क्राउडेड जगहों पर जाएंगे, अगर आप रिलीजियस जगहों को भी टूरिस्ट प्लेस समझने लग जाएंगे तो वही पूरी दुनिया वही जा रही है। एटलीस्ट चूज समथिंग जो थोड़ा पीसफुल हो, जहां पर आप एंजॉय कर सके, जो सच में एक टूरिस्ट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप वहां जाइए। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वाला गाना।

0: 5533 और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
1: और हाँ, अगर हिंदी में बताएं तो ये नंबर है हमारा 2553300 और दूसरा नंबर है 2554300।

दोस्तों, एक और नंबर हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, जो है कि 2553300, और दूसरा नंबर है 2554300. तो आप जल्दी से फ़ोन घुमाइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं. और अगर आपका फ़ोन नहीं आ रहा तो हम ऐसे ही बातें करते जाएंगे और हमारे नॉस्टैल्जिया में ही आपको घुमाते जाएंगे. तो जल्दी से फ़ोन घुमाइए और एंजॉय कीजिए नेक्स्ट ट्रैक.

0: तो लगता है रिद्धि हमारे जो श्रोता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए बात करते हैं हमारे कॉलर से।
1: हेलो विकास, ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फोन है वो जा रहा है कि आज हम ही बातें करें। ये जो छोटे छोटे ग्लिच आ रहे हैं ये बताता जा रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस बताओ हमारे श्रोताओं को, और आज की जो पूरी कॉन्वर्जेशन है आप ही लो। तो विकास, जब हम स्कूल में थे, लगता है हमारी लाइन कनेक्ट हो चुकी है, तो पर देखते हैं कौन जुड़ा हमारे साथ लाइन
0: हेलो,
1: में। हेलो हेलो, हेलो
0: लगता है किसी कारणवश जो है वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि रिद्धि आप बात कर रहे थे समर्स की, तो चलिए लगता है कि हमारे कॉलर जो है वो फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो,
1: कोई बात नहीं विकास, ऐसा बहुत बार होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कई बार हमसे दगाबाजी कर देती है, और ये जो दगाबाजी है वो लग रहा है कि आज अच्छी खासी चल रही है, और ये होना भी चाहिए कभी कभी। तो हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ तो रहे हैं पर शायद किसी कारण उनसे बात नहीं हो पा रही है। हेलो हेलो, नहीं, आज फोन हमारा हमसे नाराज है। तो विकास, जैसा कि आज हम बात कर रहे थे स्कूल्स पे, समर वेकेशंस पे, और टेक्नोलॉजी का जो
0: बिल्कुल
1: अब इन्वॉल्वमेंट हो गया है वेकेशंस में,
0: बिल्कुल
1: बाहर घूमने जाते हैं उस पर, तो आज का जो टाइम है, आज की जो जनरेशन है, आज जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अलग कॉर्पोरेट लाइफ अलग लेवल पे चल रही है, हम नींद से
0: बिल्कुल
1: उठते ऑफिस जाते हैं, वापस घर आके सो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी कहीं ना कहीं समर वेकेशन का ऑप्शन होना चाहिए?
0: बिल्कुल, ऑफ कोर्स होना चाहिए कि जैसा कि अगर आप रेगुलर अपना जो है डेली रूटीन में जो है वो अपनी वर्क प्रोफेशन को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है संडे का दिन जो है वो कॉरपोरेट ऑफिसेज हो गए या काफ़ी जो दूसरे प्राइवेट ऑफिसेज हो गए या जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, तो आप सभी को जो है वो एक प्लान बनाना चाहिए कि हाँ यार हम संडे को उस जगह पर जो है वो विजिटिंग करेंगे और साथ में एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। तो ये एक प्लान तो मेरा मानना है आपने सही बोला कि होना ही चाहिए, जिससे जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, साथ ही साथ में हमने देखा जो वर्किंग कल्चर के साथ में हमें जो प्रेशर हो वो बिल्कुल फील ना हो।
1: तो एक बार हम फिर से प्रयास करते हैं, हमारी लाइन पे कोई जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हेलो नहीं, ये जो असफल प्रयास है इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम क्या बात कर रहे थे विकास, हमारे ऑफिस लाइफ की।
0: बिल्कुल
1: तो जो ये समर वेकेशंस का कॉन्सेप्ट है, मुझे भी ऐसा लगता है कि सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं है, लोगों को सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है, और साथ ही में जो एग्जॉशन होता है, मतलब आप कहीं से भी जाकर आए, कहीं से तो क्या ऑफिस से या वापस आए तो लगता है कि यार अब तो कुछ करने का मन ही नहीं है, मतलब कुछ होता ही नहीं, कुछ काम नहीं कर पा रहे, और वही होता है ना लेथार्जिक सा फील होना कि अब तो बस नींद आ रही है, वो वाली चीज़।

0: लिए मुझे ऐसा लगता है कि मई या जून में एटलीस्ट एक वीक ऐसा होना चाहिए जिसमें हर कॉरपोरेट ऑफिस में छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो एक बचपन की हैप्पीनेस थी जब हम 2 महीने तक स्कूल नहीं जाते थे, और फिर कॉलेज में तो हम हमारे हिसाब से ही जाते थे कि चलो जाना है या नहीं, पर हाँ जब हमसे काम किए जा रहे हैं, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो हाँ ये नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जितने भी बॉस हमें सुन रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप छुट्टी रखिए, और जो जितने भी कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, आप हंसी मजाक में ये आइडिया पिच कर सकते हैं कि सर हमें एक वीक की छुट्टी तो आप एटलीस्ट दे ही सकते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर मेंटल पीस। तो
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: और साथ ही साथ जो जो छुट्टी के साथ है वो आप विजिटिंग प्लेसेस पर जो है वो भी अपना, जैसे कि हमने बात करी कि अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, कि जो भी कलीग्स हैं वो आपस में भी जो है वो प्लान बना सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स हो गए उनके साथ में भी जो है, या फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो आप एक दिन ऐसा रखिए वीक में कि जहाँ पर आप जो है वो खुद को जो है वो अच्छा से अच्छा टाइम जो है दे सके, और साथ ही साथ जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सके, ताकि जो आपके आने वाले नेक्स्ट 6 डेज है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा, जहाँ पर आप प्रेशराइज फील ना करें कि नहीं यार मेरे को छुट्टी नहीं मिली। जाए ऐसा कभी कभी माइंड में होता है ना कि यार मैं लगातार 20 दिन से 25 दिन से काम कर रहा हूँ, मेरे को रेस्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आदमी या फिर इंसान की अगर मैं बात करूँ तो वो स्ट्रेस में आने लगता है थोड़ा बहुत, कि हाँ यार उसके ऊपर वर्क प्रेशर आने लगता है, तो उस वर्क प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो है वो छुट्टियाँ बेहद ही ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल विकास, इसके साथ हम आगे चलते हैं और एंजॉय करते हैं गाने, क्योंकि फोन में आ लग रहा है कोई इश्यू आ रहा
1: बिल्कुल,
0: है, पर कोई ना, हमारी बातें भी सब सुन रहे होंगे और इसे एंजॉय कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ के एंजॉय करते हैं ये वाला ट्रैक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो विकास, जहाँ आज बात चल रही है कि कल से नौ दफा स्टार्ट हो रहा है, पर ये
1: बिल्कुल
0: कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि हमारे जो राजस्थान के लोग हैं भाई, उनके लिए तो गर्मी एक बहुत अच्छे दोस्त की जैसी है. हमारे यहाँ के लोगों को गर्मी नहीं लगती भाई, उनको तो
1: बिल्कुल,
0: एंजॉयमेंट का मौका चाहिए. और साथ ही साथ में जो हमारे बड़े बुजुर्ग है,
1: और
0: हमारे
1: कुछ
0: यहाँ के
1: जो
0: जो,
1: यहाँ के लोग हैं वो आदि भी हो चुके हैं रिद्धि।
0: हाँ, आदि हो चुके हैं. साथ में जो कल का जो दिन है वो और भी स्पेशल है, क्योंकि कल से
1: बिल्कुल
0: जो है हमारे राजस्थान का कुंभ यानी भोग शैली परिक्रमा स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी बहुत लोग आते हैं. हमारे शहर के भी बहुत सारे यंगस्टर्स और जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, कि जो पूरा रिलीजियस ट्रिप होता है, पूरा जो टूर है जहाँ पर अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, हर भगवान के दर्शन करके अलग अलग लोकेशंस पर जाके जो प्रॉपर भंडारा बनता है वो सारा, वो कहते हैं ना जोधपुर में एकदम गरम गरम खाना जी
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही
0: वाली
1: कहा
0: चीज.
1: नहीं का। और ये जो परिक्रमा है वो एक आस्था की परिक्रमा है, यानी कि जो कि हमारे जोधपुर में ही शुरू होकर जोधपुर में ही जो है वो खत्म हो जाती है। और लगभग ये परिक्रमा जो है वो 7 दिन तक चलती है रिद्धि, जहाँ पर जो भी हमारे ग्रामीण परिवेश के जो भी हमारे श्रद्धालु हो गए वो इसमें भारी संख्या में जो है वो भाग लेते हैं। और ऐसी बात नहीं, उनके साथ साथ जो भी हमारे युवा हो गए या फिर जो भी शहरी लोग हो गए वो भी इसमें जो है वो भाग ले सकते हैं। अगर जिसको भी आस्था में जो है अपना एज ए श्रद्धालु जो है वो पार्टिसिपेट करने की जो है इच्छुक है, तो वो लोग भी जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं. और इसकी शुरुआत जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारे जोधपुर के रातानाड़ा वाले गणेश जी है, वो यहाँ से शुरू होता है. और काफ़ी प्राउडली कह सकते हैं कि इसका समापन भी हमारे जोधपुर के घनश्याम जी के मंदिर में होता है. तो हाँ, अगर आपको भी लग रहा है कि आपको कुछ अलग ट्राई करना है, आपको एक प्रॉपर स्पिरिचुअल टूर लेना है, तो आप भी इसमें पार्ट ले सकते हैं. क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ये जब स्टार्ट होती है, तो हम अगर आप कल सुबह रातानाड़ा वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बसेज आपको मिलेगी, जिसमें आप टिकट लेके जा सकते हैं और अलग अलग लोकेशंस पे. और बहुत ही प्यारी लोकेशंस होती हैं हमारे यहाँ पे. तो आप हर मंदिर में जाओ, आपको एक नई कहानी मिल जाएगी, आपको एक नया हिस्ट्री का पन्ना मिल जाएगा, जो शायद आपको लगेगा कि ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, हमें पता क्यों नहीं था. तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आ रहा है, आपको कुछ कुछ तो नया ट्राई करना है, तो आप ज़रूर से हमारे राजस्थान के कुंभ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस एक्सपीरियंस को और अच्छा बना सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये जो स्पिरिट होती है ना हम राजस्थानियों की, कि अरे गर्मी तो क्या है, हम तो कुछ भी सहन कर सकते हैं, ये बहुत रियल होती है. ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, हम लोग यहाँ के हैं तो हम इस गर्मी के आदि हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं.
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ रिद्धि हम लोगों की जो है वो प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो श्रद्धालुओं के लिए जो है वो सुचारू रूप से व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अपनाएं। और साथ ही साथ उनको जो भी तकलीफ हो रही है, चाहे वो छोटे से छोटे किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, तो वो भी सुचारू रूप से जो है, ताकि यातायात भी जो है वो बाधित ना हो और श्रद्धालु जो है वो अपनी परिक्रमा को भी जो है वो एंजॉय कर
0: हाँ,
1: सके।
0: वैसे विकास, हम इतने सालों में देख रहे हैं कि व्यवस्था बहुत ढंग से की होती है.
1: बिल्कुल
0: हम हर जगह देखते हैं कि जो हाइड्रेशन का फैसिलिटी है, पानी का,
1: बिल्कुल
0: छांव
1: बिल्कुल
0: का, पंखों का, और जो ट्रैफिक डेविएशन है वो भी बहुत परफेक्टली किया होता है. तो ये तो है कि हमारा प्रशासन इस पर काम कर रहा है, पर हाँ,
1: बिल्कुल
0: कहीं कहीं जगहों पर लगता है कि यहाँ थोड़ा और बेटर हो सकता था. तो इस साल उम्मीद है कि सब कुछ बहुत ही परफेक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. तो ज़रूर से ये वाला जो साल का एक्सपीरियंस है भोग शैली परिक्रमा का, वो हमारे जितने भी श्रद्धालु, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल टूर वाले लोग हैं, वो इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे. तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा है, तो आप ज़रूर से इसे ज्वाइन कीजिए और एक नया एक्सपीरियंस अपने नाम कीजिए.

0: तो जैसा कि श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भोगीशैल परिक्रमा की, तो हमने देखा है कि पिछले 8-10 दिनों में जो है अखबार के माध्यम से या फिर न्यूज़ के माध्यम से जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो है वो प्रशासन ने सुचारू व्यवस्थाएं कर भी रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि ताकि लोगों को और श्रद्धालुओं को जो है वो किसी भी तरीके की दिक्कत जो हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो महसूस ना हो।
1: जी हाँ श्रोताओं, हमारी भी यही आशा है कि ये जो भोगीशैल परिक्रमा है इसको आप काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस करें, और ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, हर जगह नहीं होता है। तो आपके पास टाइम है और आपका मन है तो ज़रूर से एक्सपीरियंस कीजिएगा। हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आज हमारी बातों से ही पूरा वक्त समाप्त हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी शाम का ये लास्ट ट्रैक।

0: तो दोस्तों, आज जो है वो आपसे ढेर सारी बातें हुई समर वैकेशंस पर, और साथ ही साथ जो है वो भोगीशैल परिक्रमा के बारे में भी जो है वो हमने हमारे लिसनर्स को बताया कि किस तरीके से वो जो है वो इस परिक्रमा का एंजॉय ले सकते हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, क्योंकि शाम के ठीक 5 बजे हैं, और आज के इस माफ़ कीजिएगा कि शाम के ठीक 6 बज गए हैं, और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। और आज के इस प्रोग्राम में जुड़े थे आपके साथ आपके दो रेडियो बडीज, यानी कि मैं विकास।
1: और मैं हूँ रिद्धि। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है विकास ने बहुत सारी बातें करके 1 घंटा पीछे चले गए, पर
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारी ऐसी आशा है कि अगले रविवार जो हमारे फोन की नाराजगी है वो ठीक हो जाएगी और आपसे ढेर सारी बातें होगी। हाल फिलहाल आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मौज मस्ती करते रहें, और जो हमारे समर वेकेशन है उसे बहुत ज्यादा इंजॉय कीजिए। हाल फिलहाल दीजिए विदा।

0: ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोती की भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्स

0: आदि कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का जोधपुर केंद्र है। FM बैंड 102.1 MHz पर शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुने गुड इवनिंग जोधपुर

दोस्तों ये कार्यक्रम है गुड इवनिंग जोधपुर। धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम शाम आगे बढ़ रही है।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आपने ट्यून किया है FM Sun City और ये कार्यक्रम है गुड इवनिंग जोधपुर। दोस्तों गर्मी चरम पर है और ऐसे में गर्मी का सामना गर्मी से नहीं नरमी से करें।

दोस्तों ये कार्यक्रम है गुड इवनिंग जोधपुर और चैनल FM सन सिटी। दोस्तों गर्मी है, इसका सामना हमें बड़ी नरमी से करना है।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे गर्मी की, यानी अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और किसी से बहस हो जाए तो गर्मी है, पानी पिलाइए, शांति से बात कीजिए और अपने अपने रास्ते चलते रहिए।

0: बच्चा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रसुख एक तरफ
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों आपने ट्यून किया है FM सन सिटी। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ये कार्यक्रम है गुड इवनिंग जोधपुर।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं विशेष जयमाला विविध भारती के मुंबई स्टूडियो से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधन आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में कभी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजादी जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र।

विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। श्रोताओं नमस्कार। हफ्ते दर हफ्ते आप और हम न जाने कितनी शौर्य गाथाओं को सुनते हुए आश्चर्य, देशभक्ति, जोश और जज्बे की भावनाओं में गोते लगाते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी देशभक्ति कभी गीतों में, कभी किसी कविता की पंक्तियों में, कभी तिरंगा फहरते देख हमारे दिल में जागती है। लेकिन बात हो हमारे सैनिकों की, तो शायद ही कोई ऐसा पल बीतता हो जब उन्हें देशभक्ति की भावना में हम लीन नहीं पाएंगे। हमारे जांबाज सिपाही मातृभूमि की रक्षा के लिए पर्वतों की ऊंचाई को लांघते हैं, सागर की गहराई को झांकते हैं, आसमान की ऊंचाई को नापते हैं। देशभक्ति से भरा उनका दिल फिर भी खुद की देशभक्ति को कम आंकते हैं। इसी जज्बे और जुनून से भरी एक शौर्य गाथा के साथ आज हम आए हैं। इस शौर्य गाथा के नायक हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नेकेजाकू केंगुरसी।

15 जुलाई 1974 को नागालैंड के कोहिमा जिले के निरहमा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। कोई ये नहीं जानता था कि आगे चलकर इस बच्चे के कारण ही इस छोटे से गांव का नाम लोगों के बीच एक मिसाल बन जाएगा। वैसे इस बारे में किसी को उस समय क्या पता चलता, नन्हे नेकीज़ाकू कैंगुर से और उनके परिवार को भी इसका आभास न था। उनके पिता सरकारी विभाग में एक छोटी सी नौकरी में थे। कैप्टन नेकीज़ाकू कैंगुर से एक आम बच्चे की तरह ही अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे थे। कोहिमा साइंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद साल 1994 में वो कोहिमा के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक बन गए। एक आम व्यक्ति के तौर पर उनका जीवन बेहतरीन चल रहा था, लेकिन वो कोई आम इंसान तो थे नहीं। बस इसलिए उनके मन में एक उथल पुथल सी मची थी। उन्हें देश के लिए कुछ करना था, लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए पिता से उन्हें आज्ञा मिल ही नहीं रही थी। आखिर 3 साल बाद उनकी ये लगन रंग लाई और उनके पिता ने उन्हें सेना में जाने की इजाज़त दे ही दी।

सकते थे। 12 दिसंबर 1998 को उन्हें भारतीय सेना की सेकंड राजपुताना राइफल्स में शामिल किया गया और आर्मी सर्विस कोर में कमीशन किया गया। इसका काम भारतीय सेना तक जरूरी सामान पहुंचाने का होता है। कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे की पहली पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर में। वो एक खुश मिजाज जिंदा दिल इंसान थे। परिवार में उन्हें प्यार से नेबू कहा जाता था और यूनिट में उनके साथ ही उन्हें नींबू साहब कहकर बुलाते थे। उन्होंने आते ही अपनी यूनिट का दिल जीतना शुरू कर दिया। उन्हें संगीत का शौक था। वो न सिर्फ एक बेहतरीन गायक थे बल्कि गिटार और ड्रम में उनकी उंगलियां जादू बिखेरती थी। वो सेना के कई कार्यक्रमों का हिस्सा बने।

ऐसा नहीं था कि कैप्टन कैंगूर से सिर्फ मनोरंजन में ही आगे थे, बल्कि वो एक अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और उससे भी बेहतरीन धावक थे, जिन्हें पकड़ना मुश्किल हुआ करता। एक खिलाड़ी होने के कारण वो बलिष्ठ और जोश से भरे होते। वैसे उन्हें ये जोश, जुनून और बहादुरी विरासत में मिली थी। कैप्टन नेकेज़ाकू कैंगुरसे के परदादा निरहमा के महान योद्धा थे और उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर ही कैप्टन कैंगुरसे का बचपन बीता था। शायद यहीं से उनके मन में देशभक्ति की भावना जागी और देश के लिए कुछ कर गुजरने के दृढ़ संकल्प के साथ वो सेना में शामिल हो गए। कैप्टन नेकेज़ाकू कैंगुरसे राजपुताना राइफल्स के साथ फरवरी 1999 से जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देने लगे। इसी बीच 28 मई को राजपुताना राइफल्स कारगिल के द्रास सेक्टर में एक ऑपरेशन के लिए निकल चली।

5140 टोलोलिंग का शिखर द्रास सेक्टर में एक बेहद महत्वपूर्ण और सामरिक रूप से बहुत जरूरी पॉइंट है। यहां दुश्मन सेना ने घुसपैठ की और अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि भारतीय सेना के कई जवानों ने अपनी शहादत देकर इस महत्वपूर्ण स्थान को दुश्मन सेना के कब्जे से वापस ले लिया था, लेकिन अब भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर दुश्मन की उपस्थिति थी। दुश्मन सेना थ्री पिंपल्स रिज पर अपना कब्जा जमाए बैठी थी। इसके अंतर्गत तीन पहाड़ी शिखर आते हैं, लोन हिल, नोल और थ्री पिंपल्स, जिन्हें ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये ऐसी जगह हैं जहां से कोई भी नेशनल हाईवे 1 पर अपनी नजर जमा सकता है, और ये वो मार्ग है जहां से भारतीय सेना के लिए हर जरूरी चीज पहुंचाई जाती है। दुश्मन को भी सामरिक रूप से इस जगह की अहमियत पता थी और उसने यहां कब्जा कर भारतीय सेना के पास कोई भी सामान पहुंचने में बाधा लगा दी।

एक बड़ी शहादत देकर तोलोलिंग का शिखर तो वापस ले लिया गया था, लेकिन जब तक ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स से दुश्मन सेना को न खदेड़ा जाता तब तक ये जीत अधूरी थी। 25 जून 1999 को सेकंड राजपुताना राइफल्स को ये काम सौंपा गया। इसमें मौजूद थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए राजपुताना राइफल्स ने बिना समय गंवाए तैयारी शुरू कर दी थी। थ्री पिंपल्स रीज के नीचे ही एक सुरक्षित स्थान काजल पर सेना का बेस बनाया गया, लेकिन किसी तरह दुश्मन सेना को इसकी भनक लग गई और उन्होंने भारतीय सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन राजपुताना राइफल्स अपनी रणनीति बनाने में लगी रही। कर्नल रविंद्रनाथ ने यह तय किया कि दुश्मन सेना पर एक नहीं बल्कि कई हमले एक साथ बोले जाएंगे और इसके लिए सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर उनके लक्ष्य निर्धारित किए गए।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सेकेंड राजपुताना राइफल्स ने थ्री पिंपल सीरीज को जीतने का मन बना लिया था। इसकी रणनीति तैयार थी। तय किया गया कि सेना कई कंपनियों में बंटकर अलग अलग दिशा से एक साथ दुश्मन पर धावा बोलेगी। 28 जून को रात 8:30 बजे का समय इस हमले के लिए तय किया गया। बटालियन में अलग अलग कंपनी बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई। मेजर पद्म पाणी आचार्य को अल्फा कंपनी की कमान सौंपी गई, जो नोल को जीतने के लिए निकल चले। इस मुश्किल जीत को हासिल करते हुए मेजर आचार्य, कैप्टन विजयंत समेत कई सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। वहीं घातक कमांडो कंपनी की कमान सौंपी गई कैप्टन निकेजाकू केंगुरसे को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 25 साल के कैप्टन केंगुरसे उस समय सेना के जूनियर्स में से एक थे। उन्हें सेना में आए हुए तकरीबन 6 माह ही हुए थे। फिर उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? क्योंकि घातक पलटन की कमान सबसे बहादुर और तंदुरुस्त सैनिकों को ही सौंपी जाती है। घातक पलटन आम नहीं है, बल्कि उन्हें सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देना होता है। कैप्टन निकेजाकू केंगुरसे के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी कि उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने उसी समय ये तय कर लिया कि अब जीत किसी भी कीमत पर हासिल करना ही है। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नेके जाकू केंगुरसी की शौर्य गाथा। कैप्टन नेके जाकू केंगुरसी अपनी जीत सुनिश्चित करने की राह पर थे। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। ये एक ऐसा मिशन था जहाँ कुछ भी हो सकता था। हर जवान के मन में बस यही लालसा थी कि चाहे कुछ हो जाए, भारत भूमि को दुश्मन के पंजे से सुरक्षित करना ही हमारा लक्ष्य है। बस इसी जज्बे के साथ कैप्टन नेके जाकू केंगुरसी अपने पलटन के साथ निकल चले। उन्हें दुश्मन सेना को पीछे से घेरने का काम सौंपा गया ताकि जब सामने से उन पर हमला हो तो वो भाग ही न पाए, साथ ही उन्हें किसी तरह की कोई सहायता भी न मिल पाए। इसी बीच दुश्मन सेना की टोह लेने गए सिपाही ये खबर लेकर आए कि दुश्मन सेना के पास मशीन गन है, जिसे लेकर वो लोन हिल की एक अलग पोस्ट पर तैनात हैं और वहां से लगातार भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं। जब तक इस पोस्ट को कब्जे में नहीं लिया जाता, आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। तय किया गया कि कैप्टन नेके जाकू केंगुरसी अपनी घातक पलटन के साथ पहले इसी पोस्ट को कब्जे में लें ताकि बाकी कंपनियां अपना काम कर सकें।

कैप्टन नेकेजाकू कैंगुर से लोन हिल पर मौजूद दुश्मन सेना की मशीन गन पोस्ट को कब्जे में करने के लिए अपनी पलटन के साथ निकल चले। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ सामने से जाना नामुमकिन था और दुश्मन सेना तक पहुँचने के लिए पीछे से एक खतरनाक पहाड़ी चढ़ाई चढ़ना था। योजना के अनुसार 28 जून की रात सेकंड राजपुताना राइफल्स ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। पीछे से दुश्मन सेना को घेरने के लिए अपनी पलटन के साथ आगे बढ़ रहे थे कैप्टन नेकेजाकू कैंगुर से। उन्हें भारी फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि सभी के कान जवाब दे चुके थे। इसी बीच कैप्टन कैंगुर से को एक पतली पत्थर की दीवार नजर आई जो दुश्मन सेना से उन्हें बचा सकती थी। मशीन गन पोस्ट पर दुश्मन सेना के 7 बंकर मौजूद थे जिन्हें भारतीय सेना को नेस्तनाबूद करना था। इसके लिए चट्टान तक पहुंचना बेहद जरूरी था। कैप्टन कैंगुर से अपनी पलटन के साथ आगे बढ़ रहे थे और उन्हें बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़नी थी। ये काम यूं ही मुश्किल है और उस पर सिहरा देने वाली ठंडी हवाएं। ये सब सोचकर ही हम शायद इस काम को नामुमकिन मान लें। लेकिन वहाँ आप और हम नहीं बल्कि हमारे रण बांकुरे मौजूद थे जिन्होंने मुश्किलें देखकर पीछे हटना नहीं सीखा।

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे की शौर्य गाथा। अट्ठाईस जून 1999 सिहरा देने वाली ठंडी रात, चारों ओर अंधेरा और ऐसे में कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे के नेतृत्व में जाबाज जिंदा दिल और मौत से लोहा लेने वाली घातक पलटन चढ़ रही थी सीधी चढ़ाई। इसी पल दुश्मनों को इनकी भनक लग गई और उन्होंने अपने हथियारों के मुंह खोल दिए। अंधाधुंध बरसती गोलियां, खड़ी चढ़ाई, ठंडी रात, लेकिन फिर भी दुश्मन के हमले से खुद को बचाते कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे और उनकी घातक पलटन ऊपर चढ़ना जारी रखे थी। मानो उन्हें किसी बात का डर न हो, बस आंखों के सामने अपना लक्ष्य ही नजर आ रहा हो। सबसे आगे बढ़ते कैप्टन कैंगुरसे ने पहाड़ पर कील ठोक कर अपनी पलटन के लिए रस्सी बांधी और सभी के पहुंचने का इंतजार किया। जैसे ही पलटन ऊपर पहुंची, दुश्मन सेना ने उन पर हमला बोल दिया। न सिर्फ गोलियां बल्कि भारी मोर्टार और ग्रेनेड भी उनकी ओर फेंकने शुरू कर दिए। इसी बीच एक फूटते ग्रेनेड का छर्रा सीधे कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे के पेट में जा घुसा। वो घायल हो गए। दर्द ने उन्हें कुछ पल को रुकने पर मजबूर किया और उन्हें ये आभास हुआ कि उनकी पलटन के कई जवान अपनी शहादत दे चुके हैं। कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे ने खुद को

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एक सैनिक की बहादुरी और उसकी हिम्मत का कोई पर्याय नहीं है। जरा सोचिए कि ठंड से सिहरती रात में घायल लहूलुहान कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से अपनी पलटन को हिम्मत न हारने के लिए कोई भाषण नहीं देते, बल्कि वो अपनी हिम्मत उन सभी में प्रवाहित करते हैं। पेट के घाव और रिश्ते खून की परवाह न करते हुए वो वापस खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और हाथ में रॉकेट लॉन्चर का भार लिए। हम वहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन ये यकीनन कहा जा सकता है कि मात्र 25 वर्ष के इस युवा के हौसले और साहस के आगे दुश्मन भी भौंचक्का रह गया होगा। कैप्टन नेके जाकू कैंगुरसे ने ऊपर पहुँचते ही दुश्मन सेना के पहले बंकर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। उनका ये हौसला उनकी पलटन में जोश भरने के लिए पर्याप्त था। सभी एक बार फिर आगे बढ़ चले। अभी दुश्मन सेना के 6 और बंकर मौजूद थे। खतरा और मुश्किलें भी एक पायदान ऊपर थी। कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से अपनी घातक पलटन के साथ दुश्मन सेना के बाकी बंकरों की ओर बढ़ चले। इस बार सिर्फ खड़ी चढ़ाई ही सामने नहीं थी, बल्कि उस पर जमी बर्फ इस चढ़ाई को और मुश्किल बना रही थी। कैप्टन कैंगुर से ने देखा कि उनका बूट चढ़ाई में उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उन्होंने -10 डिग्री की उस ठंडी रात में अपना बूट उतार दिया और नंगे पैर चढ़ाई चढ़ने लगे। मानो लक्ष्य पाने का एक जुनून उन पर सवार था। सुन्न होते पैर, पेट का जख्म, ऊपर से आती मशीन गन की फायरिंग, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का हमला, कुछ भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो रहा था। वो बस चढ़ते जा रहे थे। उफ, ये हौसला, ये साहस और खुद पर इतना भरोसा एक बेहतरीन नेतृत्व की ही पहचान हो सकती है। जब ऐसा जोश सामने हो तो पूरी पलटन का दिल उस जोश के वशीभूत हो जाता है।

जैसे ही कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से चढ़ाई चढ़कर दूसरे बंकर के पास पहुंचे कि दुश्मन सेना के दो सिपाही उनकी ओर लपके, लेकिन कैप्टन के गुस्से से पार पाना किसी के बस में नहीं था। उन्होंने दुश्मन सेना के उन दोनों सिपाहियों को पलक झपकते ही हाथापाई करके अपने कमांडो खंजर से ढेर कर दिया। आगे उन्होंने दो और दुश्मन सिपाहियों को अपनी राइफल से मार गिराया। दुश्मन सेना का दूसरा बंकर भी नेस्तनाबूद किया, लेकिन अब भी दुश्मनों के 5 बंकर बाकी थे और उन्होंने दुगनी तेजी से हमला बोल दिया। सामने से आती धुआंधार गोलियों की बौछार को कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से अपने सीने पर झेल गए और वीरगति को प्राप्त हुए। ये उनके अदम्य साहस का ही परिणाम था कि अपने सेना नायक को इस तरह शहीद होते देख पूरी पलटन में इतना गुस्सा और जोश भर गया कि उन्होंने दुश्मन से कम मात्रा में होने के बाद भी उन पर धावा बोल दिया। कई जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया, लेकिन उनके साहस और जोश के आगे दुश्मन सैनिक भाग खड़े हुए। जो वहां रुके उनके प्राण उनके शरीर का साथ न दे सके।

कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे के जोश, साहस, बुद्धिमत्ता और सर्वोच्च बलिदान का ही परिणाम था कि दुश्मन सेना के मुख्य पोस्ट भारतीय सेना के कब्जे में आ गई और सेकंड राजपुताना राइफल्स ने लोन हिल में भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस जीत ने कारगिल विजय में एक बड़ी भूमिका निभाई। कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे ने जो आखिरी पत्र अपने पिता को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पापा, हो सकता है कि मैं वापस घर ना लौटूं और फिर से अपने परिवार का हिस्सा न बन पाऊं। अगर मैं वापस न भी आ पाऊं, तो मेरा शोक मत मनाना, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि मैं देश के लिए अपना सर्वस्व देना चाहता हूं।

कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे ने अदम्य साहस, अटल संकल्प, दृढ़ता और कर्तव्य से परे जाकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस शौर्य, अदम्य साहस और अद्वितीय कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आर्मी सर्विस कोर से महावीर चक्र पाने वाले एकमात्र सैनिक हैं। उनके सम्मान में ASC कैंपस बेंगलोर के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम कैप्टन कैंगुरसे गेट।

रखा गया है। कोहिमा के गांव में उनके नाम से कैप्टन केंगुर से वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई है। सेना की ओर से प्रतिवर्ष कैप्टन केंगुर से मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतिवर्ष कोहिमा में आयोजित किया जाता है। देश के इस जाबाज को हमारा भावपूर्ण नमन।

विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नेके ज़ाकू केंगुरसे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्टेशन में और सिंगर में बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
2: ऐसी अद्भुत यादें

आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं सैक्सोफोन वादक सुरेश यादव। क्लैरिनेट पर भी बजाई धुन आपको आज सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में कलाकार सुरेश यादव।

अभी आप सुन रहे थे छलिया फिल्म के गाने की धुन। कलाकार थे सुरेश यादव, सैक्सोफोन वादक। आइए अब सुनते हैं छलिया फिल्म का गाना मुकेश की आवाज़ में। अमर जलालाबादी की बोल है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

बैजू बाबरा फिल्म के गाने की धुन आप सुन रहे थे, कलाकार थे सुरेश यादव। अब इसी फिल्म का गाना सुनिए, गाना क्या झलक है ये। फिल्म बैजू बाबरा, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

बैजू बाबरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आज के कलाकार थे सैक्सोफोन वादक सुरेश यादव। अब आज का साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हरि नारायण शर्मा की लिखी झलकी मैरिज एनिवर्सरी।
1: हे भगवान, ऐसा भुलक्कर और लापरवाह पति किसी को ना दे। सवेरे जब ऑफिस जा रहे तो कम से कम 10 बार जनाब को घर जल्दी आने को बोला था, लेकिन क्या मजा जो जनाब जल्दी घर आ जाए।
2: सीमा, सीमा, अरे भाई जल्दी दरवाजा खोलो, कहाँ हो?
1: चूल्हे में।
2: चूल्हे में? अरे वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी बाहर निकलो वरना जल जाओगी।
1: मैं जलूं या मरूं तुम्हें क्या?
2: पर हुआ क्या है, जरा हम भी तो सुने कि ये त्योरियां क्यों चढ़ी हुई हैं।
1: तुम्हें कुछ याद भी रहता है, सवेरे जब तुम ऑफिस जा रहे थे तब मैंने कितनी बार कहा था कि घर जल्दी आ जाना, पर मेरी कौन सुनता है। बैठ गए फटीचर दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में।
2: तुम भी कमाल करती हो सीमा। अरे ऑफिस से सीधा घर चला आ रहा हूँ, ये देखो अभी सिर्फ 7 बजे हैं और 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, और ट्रैफिक की हालत तो तुम जानती हो, ऑफिस से घर आने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है।
1: अगर कसर रह गई है तो वापस चले जाओ।
2: तुम तो बस बात बात पे झगड़ना जानती हो। खैर ये बताओ कि मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा था? हाँ, और आज ये बंठन कर कहाँ जाने का इरादा है?
1: तुम्हें दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है? कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है?
2: तारीख भाई 24 अप्रैल।
1: हाँ 24 अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है?
2: 24 अप्रैल महत्वपूर्ण? अरे हाँ याद आया, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, यानी मैरिज एनिवर्सरी। अब याद आया कि आज आप मुझे ऑफिस से जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी, और आप ये सज धज कर क्यों बैठी हैं? भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: बस बस रहने दो।
2: अगर तुम सवेरे ही मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता।
1: अब मुंह देख के बात मत करो, जिस आदमी को अपनी शादी की सालगिरह के ही आदमी आए उससे गिफ्ट की क्या उम्मीद की जा सकती है।
2: अच्छा बाबा माफ कर दो, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, और कहो तो हमेशा की तरह कान पकड़कर उठक बैठक लगा लूं। अरे लगा ही लेता हूँ, इक्कम एक, दुक्कम दो, तिक्कम तीन।
1: अरे अरे क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
2: तो बोलो माफ किया।
1: अच्छा बाबा माफ किया।
2: ये हुई ना बात। अब जरा मेरे पास में बराबर में आके बैठो ताकि हम आज का प्रोग्राम तय करें।
1: अच्छा पहले तुम बताओ।

0: कि तुमने क्या सोचा है।
1: अरे पर तुम वहां मुड्ढी पर क्यों बैठी हो, यहाँ सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना।
0: नहीं नहीं, मैं भला आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ।
1: क्यों मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती?
0: अभी कल ही मैंने गुरुजी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का बैठने का स्थान पति से नीचा होना चाहिए, और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों के दासी होती है।
1: अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? देखो सीमा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या तुम वही सीमा हो जिससे मेरी 30 साल पहले शादी हुई थी?
0: मैं तुम्हारी वही 30 साल पहले वाली सीमा हूँ।
1: देखो सीमा, तुम ये किन दकियानुसी बातों को लेकर बैठी हो? अरे ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, और वैसे भी पति पत्नी तो गृहस्थी की गाड़ी के तो पहिए हैं। अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो ये समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है।
0: अब तुम कुछ भी कहो, पर मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती।
1: ठीक है, अगर तुम सोफे पर मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती तो मैं दूसरी मुड्ढी लेकर तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊंगा।
0: अगर तुम मुड्ढी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी।
1: अच्छा, और अगर मैं भी चौकी पर बैठ गया
0: तो मैं पीढ़े पर बैठ जाऊंगी।
1: और अगर मैं भी पीढ़े पर बैठ गया
0: तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी।
1: और अगर मैं भी जमीन पर बैठ गया
0: तो मैं जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी।
1: और अगर मैं भी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ गया
0: तो मैं तुम्हारे ऊपर उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगी।
1: क्यों?
0: नहीं तो क्या, इतनी देर से बहस किए जा रहे हो, ये नहीं कि आज का प्रोग्राम क्या है बताओ।
1: अरे हाँ, इस बेकार की बहस में मैं ये तो भूल ही गया था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ देखो, अभी बजे हैं 7:30। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे।
0: पिछले साल भी तो हमने यही किया था, इस बार मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ।
1: सोच तो मैं भी कुछ नया ही करने की हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताओ, तुम क्या नया सोच रही हो?
0: मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ बनाया जाए।
1: हाँ भाई, ये भी अच्छा आइडिया है। तो क्या खास बनाने की सोच रही हो?
0: अब तुम्हें तो पता ही कि मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ।
1: हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मलाई कोफ्ता और मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हो।
0: तो ठीक है, तय रहा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, मैं घर पर ही मलाई कोफ्ता, मटर पनीर की सब्जी और कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ। तुम हलवाई से 1 किलो रसमलाई और 1/2 किलो बादाम रोल ले आओ, और हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का एक फैमिली पैक लाना मत भूलना।
1: एक मिनट सीमा, तुम शायद ये भूल रही हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं।
0: मुझे पता है।
1: अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो?
0: मैं सोच रही थी कि हमारी शादी की सालगिरह के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए।
1: यानी घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेती हो।
0: मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और पिछली बार शादी की सालगिरह पर तुमने भी तो अपने भैया भाभी को बुलाया था, उसकी क्यों नहीं कहते? वैसे भी तुम्हें मेरे रिश्ते फूटी आंख नहीं सुहाते।
1: झूठ, बिल्कुल झूठ। देखो मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों की बजाय तुम्हारे रिश्तेदारों की ज्यादा इज्जत करता हूँ।
0: जरा मैं भी सुनो कि मेरे कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो।
1: देखो मैं अपने ससुर की बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी सास की बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी बहन की बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ।
0: ठीक है, अपनी चौंच बंद करो और चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान कहा है वो ला कर दो, और कान खोल कर सुन लो, अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरुजी के प्रवचन में सुनी हुई बातों को भूल जाऊंगी।
1: हाँ ठीक है, लाओ थैला और पैसे दो।
0: ये लो थैला। हाँ, पैसे मेरे पास है नहीं।
1: क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं है? अरे अभी परसों ही तो मैंने तुमको 3,000 रुपए दिए थे।
0: हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 3,000 नहीं 30,000 दिए हो। अरे 3,000 रुपए में तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, वो 3,000 रुपए तो हमारी किट्टी पार्टी में उसी दिन खर्च हो गए थे।
1: क्या, तुमने किट्टी पार्टी में 3,000 रुपए खर्च कर दिए? अरे सीमा, कितनी बार तुमको समझा चुका हूँ कि पैसे देखकर खर्च किया करो। अरे तुम एक क्लर्क की बीवी हो, किसी आईएएस की नहीं?
0: अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए आईएएस ही ढूंढ रहे थे, पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी कर ली।
1: अरे तो ना करती, कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था?

0: झूट मत बोलो, तब तो रोजाना सुबह शाम मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा की चौखट पर नाक रगड़ा करते थे।
1: झूठ, सफेद झूठ। बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौखट उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए।
2: अरे ये तो मेरी किस्मत टूटी थी जो उनकी बातों में आ गया और तुम्हारे जैसी भैंस से शादी कर ली।
0: क्या कहा, मैं भैंस?
2: हाँ हाँ, तुम भैंस, तुम्हारी अम्मा भैंस और तुम्हारा पूरा खानदान भैंस।
0: अब तो खबरदार, जो मेरे खानदान के लिए कुछ जबान खींच लूंगी।
1: अरे जा जा, बड़ी आई जबान खींचने वाली, भीमसेन की औलाद।
0: क्या कहा, भीमसेन की औलाद?
1: हाँ हाँ, भीमसेन की औलाद।
0: तो ठीक है, अब मैं तुम्हें भीमसेन की औलाद बनकर दिखाती हूँ। कहो है मेरा झाड़ू? अरे कहा? हाँ ये रहा।
2: अरे बचाओ,
0: कहा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगी तुमको।
3: अरे सीमा बहन, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ जा रही हो?
0: जहन्नुम में।
3: क्यों, तुमको जहन्नुम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई?
0: वो गुड्डू के पापा गए हैं ना, उनको लेने जा रही हूँ।
3: पर गुड्डू के पापा वहाँ क्यों गए हैं?
0: आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो मेरे लिए बड़ा सा गिफ्ट लेने गए हैं।
3: पर सीमा बहन, आपके लिए तो हरीश भैया गिफ्ट पहले ही ले आए थे।
0: क्या, मेरे लिए गिफ्ट?
3: हाँ, ये देखिए, हरीश जी कह रहे थे कि आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, इसलिए मेरे पास रखवा दिया था। और कह रहे थे कि मैं आधे घंटे बाद आकर आपको दे दूं।
0: क्या वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे?
3: हाँ, और ये भी कह रहे थे कि पहले होटल में खाना खाने जाओगे आप लोग, और फिर उसके बाद मूवी का प्लान है।
0: क्या उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और मैं इतनी छोटी सी बात पर उनसे झगड़ा कर बैठी?
3: क्या आज के दिन झगड़ा? ऐसा क्या हो गया?
0: अब क्या बताऊं सरला बहन, उन्होंने बाहर खाने और मूवी का प्रोग्राम बनाया था और मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए। हे भगवान, मैं क्या करूं?
3: क्या तुम इतनी सी बात के लिए हरीश भैया से झगड़ पड़ी? अरे सीमा बहन, और वैसे भी आज तो ये दिन तुम्हारा है, आप दोनों को एंजॉय करना चाहिए। भैया भाभी को बुलाने के लिए तो रक्षाबंधन भाई दूज के त्योहार है ना।
0: मैं भी कितनी पागल हूँ जो आज के दिन उनसे झगड़ा कर बैठी। हे भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूं।
3: सीमा बहन, तो आपको वाकई आपकी बातों पर पछतावा हो रहा है?
0: हाँ सरला बहन, मैं उनसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं?
1: अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है।
0: तो जनाब यहाँ छुपे हैं?
1: हाँ। अरे अब तुमको छोड़कर इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था।
0: तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? ओ हरीश, तुम कितने अच्छे हो।
1: अरे अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे चक्कर में 8 बज गए हैं और अब जल्दी चलो।
0: अरे सरला बहन, तुम भी चलो ना।
3: सीमा बहन, अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि आज का दिन तो आप दोनों के एंजॉय करने का दिन है। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जाइए और जल्दी जाइए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए।
0: थैंक यू।

तो ये थी जल की मैरिज एनिवर्सरी। इसके लेखक हरि नारायण शर्मा, निर्देशन किया H.S. व्यास ने। आपको बता दें ये आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की भेंट अभी आपने सुनी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे
0: बजता है छाया गीत विविध भारती।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम की शुरुआत फिजा फिल्म के गाने से, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, गुलजार के बोल, अन्नू मलिक का संगीत।

कल हो ना हो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

यमला पगला दीवाना टू इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में कुमार के बोल थे। फिल्म है ओम शांति ओम। शान उदित नारायण श्रेया घोषाल सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत

ओम शांति ओम। फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शान उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर की बोल थी, विशाल शेखर का संगीत था। ये सिंगम फिल्म का गाना है, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अजय अतुल का संगीत है।

0: सिंघम फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
3: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
2: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
3: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
4: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे

0: महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर

0: रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे।

श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक

0: जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। दोस्तों, आज जाने माने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की याद का दिन है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम। अगला गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज़, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म पेइंग गेस्ट।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: है?
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
1: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तुम सा नहीं देखा इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।

0: साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाएगा।
1: 16 साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

दोस्तों नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम आज समर्पित है जाने माने शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। दीवाना

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल से।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजनू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है, सभी गानों ने सुन

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंड

0: आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए. उस आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है.
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद.
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

मन की उड़ान धरती और आसमान की परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

0: अच्छा या गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकरा।
0: हम अभी हाजिर हुए।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

दुनिया की जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर पड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले सब कुछ, सिर्फ तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है मन के भीतर। दुनिया के लिए मुस्कान हमारा परचम है।

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चनें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

छाया गीत में आज नक्श लाहिरपुरी के नखमे थे। फिल्मों के नाम, फिल्म तुम्हारे लिए,

0: फिल्म कॉल गर्ल।
1: उल्फत में जमाने की
0: फिल्म दर्द,
1: दर्द सीने में छुपा ले,
0: और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता।
2: माना
0: आज का चाहेगी इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। विविधा विविधा विविध भारती के विविध रंगी।
3: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से लिखा जाएगा।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 800,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 549,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग श्रीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla.